देखिए वही ऐनक जो इंसान बनाता है टूटती रहती, और वो आंख का शीशा जो अल्लाह ने बनाया अक्सरियत का सलामत रहता है, मर के भी सलामत रहता है, इसीलिए डोनेट करते हैं। लहू मुअक्किबातुम मिन बैन यदैह, हिफाजत करने वाले, पीछा करने वाले आगे पीछे मौजूद हैं। यहफजूनहू मिन अम्रिल्लाह, अच्छा ये एक और हिफाजत भी हो रही है हमारे आमाल की कि हम कर क्या रहे। सूरत तारिख में आता ना, व इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पे कोई निगरान ना हो। हर इंसान पे निगरान मुकर्रर है, कौन से? व इन अलैकुम लहाफिजीना किरामन कातिबीना, तुम पर हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। किस चीज की हिफाजत? तुम्हारी बातों की जो छुप छुप के करते हो, सब लिख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, कोई लफ्ज़ उसकी ज़बान से नहीं निकलता मगर एक हाजिर बाश निगरान फौरन लिख लेता है। इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, हिफाजत करने वाले हैं, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, सब कुछ लिख रहे हैं। सच्ची बात बताएं, अगर हमारा बोला हुआ सब लिखा सामने आ जाए, हम खुद ना पढ़ सकें, और कैटेगराइज भी हो जाए कि ये सब गीबत में आता है, ये तानों में आता है, ये इसमें आता है, ये इसमें, हम खुद फेस ना कर सके उसको। इसके बावजूद कितने निडर और बेखौफ है। फरमाया तुमको याद नहीं, तुम भूल जाते हो, लेकिन हिफाजत करने वाले आस पास ही फिरते रहते, चौकीदार आस पास पहरा देते हैं, क्या कर रहा है, कौन इसके पास आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे सो रहा है, कैसे कौन सा काम कर रहा है। हम हार्डली कभी याद करते हैं इसको, और वो हर वक्त हमको वॉच कर रहे हैं, हर वक्त फोकस किया हुआ हम पर। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में रात और दिन के फरिश्ते बारी बारी आते हैं। मौकबात इसी वजह से कहा, एक के बाद एक आ रहा है, और सुबह और असर की नमाज में जमा होते हैं। फिर वो फरिश्ते जिन्होंने तुम में रात गुजारी थी आसमान की तरफ चढ़ जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे दरियाफ्त फरमाता है, हालांकि अल्लाह उनके बारे में खूब जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो कहते हैं, हमने उनको ऐसी हालत में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ रहे थे, और जो सो रहे हो उनके बारे में ये नहीं कहते। पहली रिवायत बुखारी और मुस्लिम की थी। मुस्नद अहमद और मुस्लिम में है, तुम में से हर एक के साथ जिन साथी है और फरिश्ता साथी है। लोगों ने कहा कि आपके साथ भी, यानी जिन आपके साथ भी, यानी शैतान मुराद है ना, शैतान जिन्नों में से। तो आपने फरमाया, हाँ लेकिन वो मुझे भलाई के सिवा कुछ नहीं कहता, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन भी मुसलमान था। तो इससे क्या पता चलता है, ये पीछे भी मैं शायद बता चुकी हूँ कि जो शैतान होता है ना वो वसवसा डालता है, और जो फरिश्ता होता है वो नेक ख्याल डालता है। फरिश्ता हिफाजत करता है, मदद करता है, इसीलिए आप देखेंगे कि हर बुरे ख्याल के बाद एक अच्छा ख्याल जरूर आता है कि देखो नहीं ये नहीं ठीक, ना करो, लेकिन हम कहते अच्छा तुम चुप करो, मुझे करने दो, मत रोको, कोई दलील तावील करके, जो वही करते हैं जो जिन साथी करवा रहा होता है। अच्छा कई लोग जिन्नों से बड़ा डरते हैं, और कई लोगों को दूसरों पे हर वक्त जिन नजर आते हैं। तो याद रखें, हर एक के साथ परमानेंट जिन है। अब बताएं कहां जाएंगे, उससे तो नहीं भागते ना, उससे डरते हैं जो कमबख्त हर वक्त वरगला रहा है और चिमटा हुआ है हमको, कहीं नहीं छोड़ता, उसको तो हर वक्त भूले रहते हैं। लेकिन और इधर उधर आने जाने वाले बेचारों से डरते रहते हैं कि वो हमको चिमट जाएंगे, वो पकड़ लेंगे, वो कर लेंगे, और वह हमका शिकार रहते हैं। जिसने पकड़ा हुआ उससे तो निकले बाहर, उसकी गुलामी से तो आजाद हो पहले, और जो उसकी गुलामी से आजाद हो जाए उसे कोई दूसरा जिन कुछ नहीं कह सकता। लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिहि यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम।

जी समिन प्रोग्राम रोशन सुबह मां बुध पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां जंहिंमें सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो मेहरापुर मटियारी सकरण ऐं मातली स्टेशन तां ऐं मुंहिंजो मेज़बान नेमत लाइ जुड़े जो समझा ॻाल्हि कंदासीं रिश्तनि जी त हिन दुनिया में हर इंसान हिक ॿिए सां रिश्तनि में ॻंढियल आहे किथे रत जा रिश्ता आहिनि त किथे रुहानी त किथे वरी प्यार ऐं मुहबत जा रिश्ता मौजूदु आहिनि मतिलबु त इंसान कंहिं न कंहिं रिश्ते में नाते सां लाॻापियल या ॻंढियल आहे अहिड़नि सभिनी रिश्तनि में हिकु रिश्तो इश्क ऐं हुसन जो रिश्तो बि आहे जंहिंमें इश्क सदाई इहा सदा बुलंद कंदो रहंदो आहे त हुसन हुन खां हमेशह इम्तिहान वठंदो रहे ऐं इश्क वरी अहिड़े इम्तिहान खे हुसन जी ख़िदमत सम्झंदे पाण खे भाग वारो सम्झंदो आहे इश्क जॾहिं महबूब जे हथ में काती ॾिसंदो आहे त हू नचण ऐं कुलण लॻंदो आहे ही इश्क जी उहा मंज़िल आहे जिते इंसान पंहिंजो सभु कुझु क़ुर्बान करे ऐं नींह जा नारा हणंदो रहंदो आहे पर साईं जा फ़ाइज़ अली खे ॿुधूं था त इश्क ऐं रिश्तनि जे हवाले सां कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे

अजी साइमन साइमन जा प्रोग्राम रोशन सुबह में असा सवाल रखियो आए ए तमा के उम्मीद त इंतजार होंदो ओसियड़ होंदो त असा जो जेको सवाल केड़ो आए असा जो अज जो सवाल आए त उहो केड़ो मेवो आए जे जो वणन आए थिंदो न का अवल थिंदी आए जी हां तमाम आसान सवाल आए त उहो केड़ो मेवो आ जे जो वण या अवल न आए थिंदी ए असा दोस्तन के बुधाईंदा लाऊं जे कने अवां के सवाल जो सही जवाब अचे बियो त असांजे एस एम एस ज़रिए सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था एस एम एस करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे उहो इहो आहे त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते एल आर के यानी लाड़काना एल आर के लिखी स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां सेंड कंदव 888 ते ऐं असांजो जी एफ एम 88 आई डी आहे फेसबुक जी ऐं असांजो फेसबुक जो पेज आहे तव्हां उन ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था ऐं जेके दोस्त फोन कॉल ते ईंदा आहिनि ऐं रेगुलर कॉलर आहिनि त असांजी आन हूंदी मोबाइल 10 बजे खां बाद में स्टूडियो में तव्हां कॉल करे बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु नोट कराए सघो था असांजो नंबर तमामु आसान आहे 0332231322888

ॻाल्हि घणी हिकिड़ो हले पई या चर्चो हले पियो पेट्रोल जो, त पेट्रोल जेको ॾींहों ॾींहुं महांगो थींदो वञे पियो, त असांजे गवर्नमेंट जी पॉलिसी में वज़ीर आज़म जे इन रिलीफ में अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असांखे रिलीफ तमामु सुठो मिलियो आहे। जेको अव्हां खे यकीन हिन वक़्तु जेको पेट्रोल पंपनि ते पैकेज ॾिनो वियो आहे त 100 रुपियो फी लीटर ते असांखे रियायत आहे, ऐं उन जो हिकिड़ो आसान तरीक़ो मां अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। तव्हांखे हर पेट्रोल पंप ते उन जो आसान तरीक़ो बि जेको वॾो बैनर लॻल आहे पेना फ्लैक्स लॻल आहे उहो बि तव्हांखे उतां बि सॼी मालूमात मिली वेंदी, पर मां बि अव्हांखे ज़रूरु मालूमात ॾींदुसि त जेके दोस्त पेट्रोल बाबति पंहिंजो मालूमात वठणु चाहिनि था त गौर सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो। त असुल में जेकॾहिं तव्हां मोबाइल में वेंदव SMS में वेंदव उन जे राइट ऑप्शन में वेंदव त REG वॾी बेसीअ में तव्हां REG लिखंदव ऐं उनखां बाद में NIC पंहिंजो स्पेस ॾींदव, स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजी जेका NIC आहे उन जा तव्हां डिजिट हणंदव, उनखां बाद में तव्हां वरी स्पेस ॾींदव तव्हां वारे AS लिखंदव, यानी असांजो जेको सूबो सिंध आहे उनजो पहिरियों अख़र AS आहे। AS लिखी करे तव्हां वरी स्पेस ॾींदव ऐं गाॾी जो जेको नंबर आहे त वरी तव्हां उहो लिखंदव, उनखां बाद में वरी तव्हां स्पेस ॾेई वरी तव्हां तारीख़ लिखंदव जंहिं तारीख़ ते गाॾी रजिस्टर थी आहे ऐं तव्हां सेंड कंदव 9771 ते। जी हा, तव्हां सेंड कंदव 9771 ते। जेकर तव्हांजो दुरुस्त लिखिजी आयो तव्हांजी मैसेज ओके थी वई त पोइ तव्हां वरी लिखंदव टोक यानी TOK लिखी करे तव्हां सेंड कंदव त तव्हांखे वधीक ऑप्शन मिली वेंदो त तव्हां पेट्रोल जे अहल आहियो, यानी तव्हांखे 500 रुपए जो पेट्रोल मिलंदो ऐं 500 रुपए जो पेट्रोल वरी ॿिए हफ़्ते मिलंदो। वरी जॾहिं तव्हांजो उहो ॿ हफ़्ता पूरा थी वेंदा त वरी जेको आहे सो तव्हांखे ॿीहर TOK लिखिणो आहे, यानी तव्हां ॿीहर टोक लिखंदव वरी सेंड कंदव त तव्हांखे ॿिनि हफ़्तनि जो वरी तव्हांखे पेट्रोल मिलंदो, पर हफ़्ते जो अलॻि मिलंदो। जी हा साईं, मुंहिंजा अव्हांखे मालूमात ज़रूरु मिली वेंदी। वरी अव्हांखे नोट करायां थो जेके दोस्त असांजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया त वज़ीर आज़म जे प्रोग्राम तहत जेको असांखे रिलीफ मिलियो आहे पेट्रोल जे हवाले सां त महांगो पेट्रोल उन जे हवाले सां तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो REG माना रजिस्टर्ड REG वॾी बेसी में स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजी NIC हणंदव वरी स्पेस ॾेई तव्हां AS लिखंदव यानी सिंध सूबो आहे असांजो, उनखां बाद में AS खां बाद वरी तव्हां स्पेस ॾेई तव्हां गाॾी जो नंबर लिखंदव रजिस्टर्ड नंबर जेको आहे गाॾीअ जो, उनखां बाद में वरी तव्हां स्पेस ॾेई तव्हां रजिस्टर्ड तारीख़ तव्हां लिखंदव सेंड कंदव 9771 ते। जी हा, 9771 ते तव्हां सेंड कंदव। जेकर तव्हांजो SMS दुरुस्त आयो त पोइ तव्हां टोक सेंड कंदव, टोक यानी TOK सेंड कंदव, तव्हांजो बकाया मैसेज अची वेंदो त तव्हां रजिस्टर आयो ऐं तव्हांजो टोकन नंबर तव्हांजो निकिरी ईंदो ऐं तव्हां उन कंहिं न कंहिं पेट्रोल पंप तां तव्हां पंहिंजो पेट्रोल विझाए सघो था। साईं, मुंहिंजे हिन पेट्रोल महांगो आहे ऐं महांगे पेट्रोल करे महबूब सां मिलणु अॼुकल्ह ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे।

0: उसी का इंतजार कर रही हूँ।
1: थैंक गॉड शी इज हियर। सिस्टर मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। ओके जान आई एम ऑफ नाउ एंड आई विल सेंड यू सम फूड। सिस्टर इनका ख्याल रखिएगा। हाँ आई एम जस्ट कमिंग।
2: आपकी ड्रिप चेंज होने वाली है, मेडिसिंस लिया आपने?
3: जी कल रात से बड़ी बेचैनी हो रही है। आई कांट सीम टू स्लीप। मुझे लगता है दवाइयों का साइड इफेक्ट है।
2: कभी कभी बिला वजह बेचैनी हो जाती है।

टीह सेप्टेंबर आहे ऐं 28 सेप्टेंबर गुज़री चुको आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कुतनि जे चक खां बचाउ जो आलमी ॾींहुं हर साल 28 सेप्टेंबर ते गॾियल क़ौमुनि जे सिहत जे आलमी इदारे सहकार सां सन 2007 खां मल्हाए पियो वञे, जंहिंजे मल्हाइण जो मक़सदु कुतनि जी चक पाइण वारे मर्ज़ खां माण्हुनि खे ॼाण ॾियण ऐं उन जे बचाउ जो शऊर पैदा करणु आहे। त इहा हक़ीक़त आहे त असां उन्हनि जो शऊर पैदा कयूं माण्हुनि में ऐं कोशिशि कनि त अहिड़ा जेके रोलू कुता आहिनि, अहिड़ा जेके शिता कुता आहिनि, त असां उनखे उन खां पंहिंजे ॿारनि खे, पाण खे, पंहिंजे वॾड़नि खे बचायूं, पर असांजो माल मता बि महफ़ूज़ हुजे हुन शितनि कुतनि खां। तमामु उन में ज़हरीलो जेको आहे मादो हूंदो आहे, उन जी चक पाइण सां जेकॾहिं कंहिं मींहं खे, कंहिं गऊअ खे, कंहिं ॿकरीअ खे, जेको आहे कंहिं बि पखीअ खे जेकॾहिं उहो शितो कुतो चक पाए थो त उहो बि शितो थी वञे थो। त कोशिशि कयूं असां जेकॾहिं कुते जो चक पइजी वञे थो त उनखे असां वैक्सीन हणायूं ऐं वैक्सीन सां बचाउ थी सघे थो। उन जा डोज़ हूंदा आहिनि, टे डोज़ हूंदा आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ ॾींहनि ते पोइ बाद में लॻाया वेंदा आहिनि। त कोशिशि कयूं त अहिड़े मोज़ी मर्ज़ खां बचूं ऐं असां जेको आहे सो अहिड़ी आगाही ॿियनि ताईं बि पहुचायूं त जीअं अहिड़े आज़ार खां माण्हू पाण बची सघे।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे तो पंहिंजे पुॼण ते हयाती बखर अवां सां मुलाकात ज़रूरु थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो खे ॾींदा इज़त अलाह निगहबान।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका ऐं बरतानिया जो 13 ॾींहनि जो दौरो मुकमिल करे ॾह पहुची वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, सुल समाओ वारे वज़ीर अता तारड़ ऐं ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी वज़ीर-ए-आज़म जो आदर भाव कयो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली जे 81 इजलास में शिरकत कई। पाकिस्तान जो मौक़िफ़ मौसर अंदाज़ में पेश कयो। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अॻवाननि सां मुलाक़ातूं करे अमुन सलामती तरक़ी ऐं गॾियल सहकार खे हथी ॾियण लाइ पाकिस्तान जो मौक़िफ़ उजागर कयो। ट्रंप दलदल में फासी पियो आहे। ईरानी तजवीज़ूं अमेरिका वटि पहुची वियूं आहिनि। फ़ैसिलो ट्रंप खे करणो आहे। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रंप दलदल में फासी पियो आहे, हाणे ॿाहिरि निकिरण लाइ हथ हणी रहियो आहे। ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न कंदो। मीरो खान जे सजावल जुण जो थाणे जी हद में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो। साथियुनि जी फायरिंग में हिकु ॾुआरी मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि लुकमान लाड़ी वटि पुलिस ॾुआरियुनि सां मुक़ाबिलो थियो। मुक़ाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में बदनाम ॾुआरी इम्तियाज़ जतोई मारिजी वियो। वारसनि जो इम्तियाज़ जतोई खे पुराणी दुश्मनीअ तां क़तल करण जो इल्ज़ाम। कड़ियो घंवर में गोई कैनाल में ॿुॾी वियल 7 वरनि जे नींगर जो लाश हथ न आयो। वारसनि जो धरणो गोलाड़ची भरिसां ॻोठु अहमद खोसो वटि। नींगर शहज़ाद पुटु बशीर खोसो गुज़िरियल ॾींहुं ॿुॾी वियो हो। इलाइक़े वासियुनि ऐं वारसनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत ॿुॾी वियल नींगर जी ॻोल्हा जारी आहे। इंतिज़ामिया जी मदद न मिलण ख़िलाफ़ धरणो हयो वियो। हिंगोर जा वेझो क़ौमी शाहरा ते ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर, नौजवान फौत थी वियो, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। रसूलाबाद स्टाफ वटि हादसे में सोहेल अहमद चनो फौत ऐं साख ज़ख़्मी थियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM 88 की आवाज।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छात्रों आज ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन, तो कोई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिला जारी आहिन। 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, खास सहूलतों स्कॉलरशिप्स मौजूद। बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जने ते DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखला फीस, आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकम्मल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा, आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा मेडिकल यूनिवर्सिटी।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

anything

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे
3: मेहड़ में पुराने तकरार तां हथियारबंदन जी फायरिंग वजणा गोठाणा जख्मी बुटे मौला में खोसा बिरादरी जे बिन दुरिन में हलंदड़ तकरार तां फायरिंग वारो वाकियो पेश आयो गोलियूं लगण सबब गोठ रहम अली खोसो वासी ज़ुल्फ़कार राजा खोसो जख्मी थिया घंटी वारी हालत में लाड़काणे अस्पताल मुंतकिल कया विया पनो आकिल में संगावती तकरार तां बिन दुरिन में झेड़ो थियो 15 जणा जख्मी थी पिया गोठ अलायार टावरी में टावरी बिरादरी जे बिन धुरिन में संगावती तकरार तां झेड़ो थियो झेड़े दौरान लठियूं ऐं सरोटा लॻण सबब औरतन समेत ॿिन्ही धुरिन जा 15 जणा जख़्मी थिया कड़ो गंवर में गुणी केनाल में ॿुॾी वियल सत वरनि जे नींगर जो लाश हथ न आयो वारसनि जो धरणो गोलार जी भरिसां ॻोठ अहमद खोसो वटि नींगर शहज़ादपुर बशीर खोसो गुज़िरियल ॾींहुं ॿुॾी वियो हो इलाइक़े वासियुनि ऐं वारसनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत ॿुॾी वियल नींगर जी ॻोल्हा जारी आहे इंतिज़ामिया जी मदद न मिलण ख़िलाफ़ धरणो हयो वियो नवाब शाह जे मोहम्मदी टाउन जे रहवासियुनि जो मुबैना तौर अगवा थियल नींगरीअ जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज जानिबोर्ड पंहिंजे वालिद जमीर ज़ाल शबाना ऐं ॿियनि माइटनि सां गॾिजी प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कयो मुज़ाहिरनि मूजिबि हथियारबंदनि 11 सालनि जी नियाणी रीमा खे अगवा करे विया आहिनि नींगरीअ खे बाज़ियाब करायो वञे हिंगोर जा वेझो क़ौमी शाहरा ते ट्रालर जो मोटरसाइकिल खे टकर नौजवान फोत हिकु ॼणो ज़ख़्मी रसूलाबाद स्टाप वटि हादसे में सोहेल अहमद चनो फोत ऐं एसाक ज़ख़्मी थियो
4: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का
5: थम थम थम किताबे लेके निकले हम अम्मी ने कहा ना रुकना तुम रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।
3: हर हुआ ट्रांसपोर्ट जिका हले थी उते तहां जाए गीत धालन ताके के तो फील थे तो मुझे हर जगह थे मुझे गीत इन बसन में मुझे इन सही
4: बसन में टिकटॉक ते बिल्कुल ट्रेंडिंग में डालन
3: लाई आर्टिस्ट रहता जा गाना मना ये समझो गाए करे हुए स्टार थी
5: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे छे तो उए जदे जदे बियो को आर्टिस्ट मुझे गीत गाईंदा तो मुझे खुशी थी आए ये अल्लाह पाक असंजा ही नौजवान हैं ये सुठी गाल मुझे गीतन के जदे पान वरी बीर गाईंदा हैं तो इलाही सुठो लगंदो आ मुझे बुरो न लगंदो आ खुशी थी आए तो मुझे इन लायक समझो तो मुझे गीतन के हर जगह से घड़ी घड़ी उन्हें रिपीट कर गायन पाया तो यह खुशी जड़ी गाल है मुझे
3: या वही प्राउड की बाकी गाल है।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

हेल्थ प्रोफेशनल बणजण तवे आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाखिलाऊं जारी आहिनि चार सालनि जा डिग्री प्रोग्राम GBSN GBSM पंज सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD ॿिनि सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV CMW CNA ख़ासि सहूलियतूं

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं बिल्कुल जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल सी आप लोगों से पूछेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो आपको कितने सारे रिजल्ट्स मिलने वाले, कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जो कि आप लोगों को मिलेंगे जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप लोगों के लिए अवेलेबल है जनाब, आप जाकर अपने लिए परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के कितने सारे फायदे हैं ये आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताते रहेंगे। प्रोग्राम में आप लोगों के और हमारे साथ की बात करें तो ये साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत रहते हैं क्योंकि इसमें आप लोग हमारे साथ मौजूद रहते हैं। तो बिल्कुल जनाब आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं, सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए रेडी शेडी हो जाइए और हमारा साथ देने के लिए भरपूर तरीके से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। अच्छा यहाँ पर बहुत सारे लोग प्यारे प्यारे हमारे साथ मौजूद है तो साथ ही साथ अपने हाल चाल भी बताइए। सो डियर लिसनर्स अंत के फहालतुन कैसे ही आपकी हालत उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद है जनाब। और इन 2 घंटों में हम करेंगे आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें, और इन्नी शाली बातों में जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो बातें होंगी होंगी, लेकिन साथ साथ आप लोगों के साथ भी बातें होने वाली हैं। आप लोगों के लिए मजे मजे के गाने भी लगाएंगे और आप लोगों के साथ जनाब बहुत ज्यादा मजे करने वाले। ओके जनाब यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं कुछ हमारे बिल्कुल जी कुछ लोग ऐसे हैं जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी इस्तेमाल करें, तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाली समाते हैं तो हमें बता दिया करें कि हमें पता चल सके कि भाई आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपने खूबसूरत से चेहरे को मजीद खूबसूरत बनाने वाले। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। उनका अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां आए खालाए बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 हल्के स्माइल लाने का काम करेगी भाई जान ये सजा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 हल्के स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करेंगे जनाब आज एक बहुत ही खूबसूरत सी नात के साथ, तो बहुत प्यारी सी नात हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लगाते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास आते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आपका हमारे साथ पूरे पूरे 3 बजे तक, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी नात हमने यहाँ पर सुनी प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों और कैसे करने वाले हैं। बिल्कुल जी, आप लोगों को बताएंगे क्या तरीकेकार होने वाले हैं प्रोग्राम में शामिल होने के, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी बताते चले कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम की अगर टॉपिक की बात करें तो मेरा आप लोगों से सवाल होगा कि भाई आप मुझे बताइए ऐसी क्या चीज है जिसका पेट भरा हुआ हो तब भी वो खाती रहती है। हाँ जी, आज आप मुझे ये बताएंगे कि वो क्या चीज है जिसका पेट भरा हुआ हो तब भी वो खाती रहती है। हाँ जी, स्टॉप नहीं लगता उसको। आप मुझे बताइए इसका जवाब। अगर आप जानते हो शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, जी लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। पेज पर आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। मैंने अभी देखा कितने सारे लोग जिन्होंने कमेंट तो कर दिया लेकिन पोस्ट को लाइक नहीं किया, तो भाई पोस्ट को लाइक भी किया करें और साथ में शेयर भी किया करें, ये दोनों काम बल्कि ये तीनों काम आप लोगों ने करने होते हैं। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए और शेयर भी करते जाइए। अच्छा, उनके अलावा अगर तुम्हारा असने प्रोग्राम जो हिस्सो बनजो पाया तो लाजमी असांखे जेको ना पांजे हुजन जो सबूत दई छरींदा कर, लाजमी इहो मुखे लाजमी बुधाईंदा कयो तो तुम्हारा सब जेको आहे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करे रहा आयो। एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से कोन मिली रही आहे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तमाम पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइण लाइ छा कंदा, इहो भी तव्हांखे बुधाईंदी हलां। बिल्कुल जी, तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदा आहियूं प्रोग्राम जे अंदर, ऐं नंबर तव्हांखे इन लाइ ॿुधायो वेंदो आहे जी तव्हांजे लाइ आसानी थी सघे ऐं तव्हांखे इन चीज़ जी टेंशन न हुजे त बाबा हाणे असां किथां वञी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघूं था, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते तव्हांजे ॻोठनि में तव्हांजे शहरनि में अवेलेबल थी सघे थी। उन्हनि जे लाइ बसि तव्हांखे नंबर से राबितो करणो आहे, नंबर जेको तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां, नंबर से तव्हां लाज़मी राबितो करे वठंदा कयो, कॉल कंदा कयो या वरी हिकिड़ो नंढड़ो मैसेज छॾे ॾींदा कयो त भाउ अदा हिन फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोन मिलनि था, महिरबानी कयो अवेलेबल कराए छॾियो, त हू अवेलेबल कराए छॾींदा। ओके जी, सो अगर तव्हां नंबर से राबितो करणु चाहियो था त नंबर आहिनि 03-27-38-4309-3-73-84-309 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907-312-5907-5-25-907। ही तारिक भाई जो नंबर आहे, तारिक भाई जेको आहे न हर वक़्तु तव्हांजे लाइ वेठो आहे त कंहिंमहिल था असांजे लिसनर्स असांखे कॉल कनि त असां उन्हनि खे जेको आहे न उन्हनि जे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराए छॾियूं। अगरि तव्हां बि फोन कंदा त तव्हांजी फोन रिसीव थींदी, तव्हांखे रिस्पॉन्स मिलंदो, ऐं तव्हां अगरि उन्हनि खां कोई बि मालूमात वठी सघो था त बाबा फलाणी जॻह ते नथी मिले त असां किथां वञी वठी सघूं था, त हू सॼो तव्हांखे डिटेल समय तव्हांखे ॿुधाईंदा त तव्हां किथां किथां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खे परचेज करे सघो था। सो नंबर से रातो लाज़मी कजो ऐं पंहिंजे हुजण जो सबूत ॾियो, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, ऐं मूंखे ॿुधायो उहा कहिड़ी शइ आहे जेका मतिलब जंहिंजो पेट भरियल आहे पोइ बि उहो खाईंदी रहंदी आहे। हां जी, और आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, यहाँ पर आपका मैसेज है जी। अच्छा, आपके फीडबैक्स आ चुके हैं। अखलाक भाई सबसे पहले हमारी पोस्ट पर मौजूद है, वेलकम कहते हैं प्यारे भाई को। और फहीम शेख हमारे साथ कहते हैं कबर सा कुछ त गालाए रही आ, हवा मिट्टी के जागाए रही आ। फहीम शेख भाई वालेकुम अस्सलाम इन मौला इस्लाम अदर केरे अदा छाल आ खुश आई सफा चाक स्लेट कलम मस हाओ सफा मजे में ता बुदायो। और नवीद खान हमें सुन रहे हैं, नवीद खान आपका बहुत शुक्रिया, जागू बुकटी से आप हमें शायद ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और जीशान हमें सुन रहे हैं, कहते लाड़काना से आपको सुन रहा हूं, बहुत शुक्रिया जीशान, आपको भी वेलकम हो गया। और आप सबको जो है ना आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगे, तो आप जाइएगा और जरा परचेज कीजिएगा। अलीशा हमें सुन रही हैं, अलीशा कहती हैं अच्छा लिखती है कि उन्हें जो नाज है खुद पर नहीं वो है बेवजह, अलीशा क्वीन कि जिसको हमने चाहा हो वो खुद को आम क्यों समझे, ओ या गाल। अच्छा फरवा हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आप ही आप कैसी हैं, होप यू आर फाइन एंड वेरी गुड. यस, आप बताएं कैसी हैं. जवार सफदर अली शाह हमारे साथ कहते माशाल्लाह आपकी आवाज अभी तक वैसी ही है. माशाल्लाह अल्लाह सही आपको सलामत रखे. बहुत शुक्रिया जवार, आप हमारे साथ हैं. कहते काफी टाइम पहले आप हमारी बहुत से भी बहुत ज्यादा फेवरेट होती थी, वैसे माशाल्लाह अभी है, मेरे को लगा अब नहीं हूँ. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है. काफी दिनों के बाद प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आपको वेलकम कहते हैं. अली रजा लगारी हमारे साथ है. गोठ जाम खान लगारी से अली रजा लगारी सिस्टर वालेकुम अस्सलाम. मां ठीक आहे तव्हां ॿुधायो. कहते शो तव्हां जो तमाम नाइस आहे. ऐं सॉन्ग सोहणो आ सोहणो गुलाब तूं बाई नादिर लाशारी. ऐं सॉन्ग प्ले करना डेडिकेट अज़र लगारी, आकिम लगारी, आज़म लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, खालिक लाशारी, सिस्टर सिद्रा. ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, जैसे सॉन्ग में नादिर लाशारी बोल रहा है. जियो करे सिस्टर थैंक्स. बिल्कुल जियो गानो त असां लाज़मी ॿुधंदासीं. असां ॿुधंदासीं त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केतिरो कमाल आहे. ऐं जेको असांजे सोहणे भाउ अली रज़ा लगारी खे मिलियो आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ईअं इस्तेमाल कंदा रहो ऐं तव्हां बि सोहणा सोहणा थींदा रहो. अच्छा तारिक भाई हमारे साथ मौजूद है. तारिक भाई कहते नाइस यो, थैंक यू वेरी मच तारिक भाई. और हमारे साथ फरवा लिखती है कि आप ही अर्ज किया है, सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ उस वक्त होती है जब हम किसी को हद से ज्यादा इज्जत देते हैं और वो लोग उसे हमारी मजबूरी समझकर हमें बेवकूफ समझते हैं. हाँ सही आयो था पानी जगह थे. अच्छा हिदायतुल्ला अहमदानी कहते ये लिंक है, अगर हो सके तो प्ले करना. ओके मां ॾिसां थी. और उनखां अलावा कामरान अली हमारे साथ लिखते हैं कि जब इंसान अपने पसंदीदा शख्स से बात करने के लिए तरस जाता है तो तब महसूस होता है कि उस फकीर का दुख महसूस होता है जो सारा दिन मांगता है और रात को खाली हाथ घर लौट जाता है. ओके जी ओके. सफदर लिखते हैं कि सिडो वैसे काम बट गया है, हम आपको भूले नहीं कसम से. हाँ जी काम भी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, काम भी करना चाहिए. और जैन अली हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि वक्त गुजरने का डर हमें भी है मगर हर गुजरा हुआ लम्हा पछतावा नहीं होता. आईने में खुद से बातें हम भी करेंगे कभी मगर हर फासले का मतलब जुदाई नहीं होता. वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, यो कमाल था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो. ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कई कोन, ज़ेन मूंखे ॿुधायो त. अच्छा वैसे तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से मिले कोन थी, सो असां तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वठूं था. ठीकु आहे तव्हां टेंशन न वठिजो. और किशोर भाई कहते हैं कि आयो आयो स्मार्ट आयो अला जाए ॿुधा कसम दई. अच्छा निदड़ी हमारे साथ कहते हैं हेलो शोना मोना, वेलकम टू शो. तबियत ओका शोका है ना, सभु फा ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो. तारिक खान, तारिक भाई लिखते हैं नाइस शो, थैंक यू वेरी मच तारिक भाई. और मोहम्मद जमान कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू प्यारे भाई. आहत जलवार में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं. निदरी कहती है टॉपिक पुप्पो ओके ओके. समझने के लिए जमाने लगेंगे. और शब्द लिखते हैं कि आप नुसरत का सॉन्ग जरूर सुनाना, आज भी ऑफिस से सुन रहा हूँ आपको. जी जी मैं बिल्कुल आपको नुसरत का गाना अच्छा सा सुना दूंगी. और आहत भाई कहते हम भी आ गए, बहुत शुक्रिया आहत भाई. और अलीशा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया जी. और किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक आंसर ओके हो गया जी. और फहीम भाई कहते हैं आगे टॉपिक का ये जवाब है. ओके जी ओके, थैंक यू वेरी मच फहीम भाई, आपको भी खुश आमदी. चाचा खालिद कहते हैं कि मैं आपके शो का हिस्सा हूँ, इससे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से मुझे झंडो मरी वाले जुदा नहीं कर सकते. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वैसे झंडो मरी वाले आपको क्यों जुदा करेंगे भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम से. आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में इस तरह इजाफा लाएगी कि भाई दुनिया देखती रह जाएगी. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए. और तारिक भाई कहते हैं तारिक भाई इज वॉचिंग अदी सिद्रा. बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे प्यारे तारिक भाई भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर मिलनी चाहिए तो मैं आपको तारिक भाई का नंबर बताती हूँ ना प्रोग्राम के अंदर, तो उसके ऊपर आप रब्ता करके तारिक भाई से कॉन्टेक्ट कर लीजिए. तारिक भाई आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपने कहाँ से परचेज करनी है, या फिर अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो तारिक भाई आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा देंगे. माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे तारिक भाई हैं, तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और उन्हें मसला बताइए कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है, या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो वो भी अवेलेबल करा देंगे. चलिए जी बाकी बातें हम जो है वो बाद में आकर करते हैं. यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो.
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए

0: छा अवहां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवहां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवहां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: छंछर खां खमीस सुबुह 10 वगे का शाम 5 वगे ताई अपॉइंटमेंट आई वधिक मालूमात लाए हियरी राब्तो करियो 03-26-22-00-440
1: हेल्थ इज वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही रब्ता करें आगा जब्बार 03009312700
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सचल की सरमस्त धरती
4: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
3: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज
5: हर नया जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादी नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है जनाब जी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करके अपने खूबसूरत से चेहरे को मजीद खूबसूरत प्यारा और ब्यूटीफुल बनाएंगे। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं खूबसूरत दिखना चाहते हैं खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में मिलनी चाहिए तो वो आपको बताते हैं नंबर जिसके ऊपर आप राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराते रहेंगे। अच्छा उन खां अलावा अगर तहां प्रोग्राम जो हिस्सो थियो पया तो तहां सने फेसबुक पोस्ट के लाइक और शेयर करना कयो ऐन खां अलावा कमेंट करे मुखे उधा ते तहां से सगर मौजूद है ऐ जेके मानो सने पोस्ट के लाइक और शेयर करना है ना तो ऐसा फायदो ही पहुंचंदो है तो खोट सारी मानो के सा बुधाई सगना तो बाबा साईं तहां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तहां जी खूबसूरती जलाए भी दाडो जरूरी है। बिल्कुल जी अगर खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजर अंदाज कर दिया जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल हर कोई चाहता है कि भाई उसकी जल्द जो है वो साफ सुथरी नजर आए नरम और फ्रेश महसूस हो लेकिन उसके लिए सिर्फ खूबसूरत नजर आना काफी नहीं होता बल्कि आपकी स्किन को रोजाना वक्त देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अपनी ब्यूटी के रूटीन के अंदर आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप जानेंगे ना तो ये चीज जो वाजे हो जाएगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके स्किन को ना सिर्फ खूबसूरत बनाएगी बल्कि आपके चेहरे पर जितनी भी ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना वो सारे दूर हो जाएंगे क्योंकि रोज में अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना वो तमाम चीजें ऐड की गई है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सके हैं जैसे कि विटामिन ई बीट्स हैं माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है अल्फा आरबुटीन है कॉजिक एसिड है ग्लूटाथायोन है ये तमाम चीजें ऐड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले तैयार करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जिसे आप लगाएं तो आप खूबसूरत तो हो जाएं लेकिन आपके चेहरे की हिफाजत जो है ना वो बाकायदा से होती रहे तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से ये होगा जनाब कि आपको जो खूबसूरती मिल चुकी होगी ना वो हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रहने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज भी आप याद रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला से मुराद ये कि भाई इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए हैं ना ये आप लोगों को देते हैं जनाब फेशियल वाले रिजल्ट्स। यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके होंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं और आप लोगों को ऐसा फील होगा कि भाई आप जो हैं कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं लेकिन ये कमाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का होगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको बेहतरीन से बेहतरीन वाले रिजल्ट दे रही है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप मर्द हजरात भी कर सकते हैं आप खवातीन भी कर सकती हैं। हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है यानी कि अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप हो सेंसिटिव स्किन हो नॉर्मल हो ड्राई हो हर तरह की स्किन के ऊपर आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो जाइए और परचेज कीजिए इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अच्छा हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के क्या तरीके कार होने वाले वो बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ साथ आपको डी स्किन फेस वॉश के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश लाजमी परचेज कीजिएगा। फेस वॉश भी लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाइए दोनों चीजें साथ में लगाइए ताकि आपको रिजल्ट्स मिले ऐसे जैसे आप हासिल करना चाहते हैं। ओके जो नखा अलावा डी स्किन जो जो फेस वॉश है ना बाबा इन जे बारे में थोड़ो तांगे बुधाईंदी हला तो डी स्किन जो फेस वॉश जो है जे अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड कयो वयो आहे आई हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो हुंदो आ ना यो एतरो फायदेमंद हुंदो आ तमा जे स्किन जे लाए जो तमा जे स्किन जे अंदर ताई वेंदो आ तमा जे स्किन के हाइड्रेट रखंदो आ तमा जे स्किन के मॉइस्चराइज रखंदो आ आई तमा जे स्किन के डीपली क्लीन रखंदो आ। छो तो खोड़ सारा माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी डेली बेसिस जेका ज़िंदगी तव्हां गुज़ारियो था उन ज़िंदगी में खोड़ सारा मसरूफ़ हूंदा आहिनि तव्हांजा कमकार अहिड़ा हूंदा आहिनि जो तव्हांखे ॿाहिरि वञिणो पवंदो आहे ऐं तव्हांजे चेहरे ते इलाही गंदगी जमा थी वेंदी आहे मिटी हूंदी आहे धूल हूंदी आहे पॉल्यूशन ॾिसो था अॼु केतिरो आहे त उन सभिनी चीज़ुनि खे अगरि तव्हां ख़तमु करणु चाहियो था पंहिंजी स्किन खे क्लीन ऐं फ्रेश रखणु चाहियो था त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ट्राई करे सघो था। डी स्किन जो फेस वॉश जेको आहे न हीउ बि तव्हांजे लाइ मार्केट में अवेलेबल थी चुको आहे सो तव्हां अॼु ई वञो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर सां मालूमात वठो अगरि नथो
मिले तो अगर मगर के सजो जो नंबर तुम्हें बुधा हुआ ना उन नंबर से बस तक कॉल कर वेठो या मैसेज कर वेठो उनके बुधा तो तुम भी इस्तेमाल कर चाहो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश लगाइंदा रहो सुना थींदा रहो उनका अलावा जी जी सोना मानो असा बुधन पाया सभी के चौं था बाबा मोहब्बतू आन तुम प्रोग्राम तुम है सोने प्रोग्राम में तुम ज्वाइन करना वनो पाया 888-1 ते फेसबुक से अच्छा फेसबुक से बिल्कुल तवजा प्यारा प्यारा कॉमेंट्स प्यारा प्यारा मैसेजेस मुख्य मिलना वन था अज सवाल जो वहां पुछो आई बिल्कुल यो पुछो आए तुम बुधा वो क्या चीज है जिसका पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी वो खाती रहती है और खाती रहती है उनके अलावा एक गानो हलो गानो बुध था आई तुम चो मैसेज तरफ अचू था पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो अजू कंजूस क्यों अव लव

मुझे दुनिया, can you handle the heat, जरा पच के गरज के दिखा दे, क्या बात है, कहे मुझे गैंगस्टर गुड़िया और इसको ये दुनिया बोलती है। अरे भाई दुनिया ऐसा क्यों बोलती है? आप ऐसा कीजिए जरा, आप मुझे बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपने किया या फिर अभी तक रहता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके जी, यहाँ पर आप भाई कहते हैं कि तमहा कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई बिल्कुल खादी हुआ है ना। और हबीबुल्ला लगाई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हबीबुल्ला भाई कहते माशाल्लाह योर शो, थैंक यू वेरी मच। और चाचा तमाम लिंक शेयर किया, बिल्कुल तमाम गानों हलायूं था। और सफदर लिखते हैं थैंक्स डियर, बहुत शुक्रिया। और हिदायतुल्लाह कहते हैं इतनी खामोशियां क्यों होती है तेरी आगोश में एक कब्रिस्तान, लोग तो जान देकर तुझे आबाद करते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। आहार भाई कहते हैं कि आपदा परवीन जो गानों तमाम अन्या था ही ना ही बुधरायो एडी नाराजगी आए छा भला न भा न भा न भा नाराजगी वरी तमाम सोनन भाई रंसान छोक नासी तमाम के बिल्कुल गाना बुधराई नासी पर एकड़ी छरता तो तमाम सानी पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना रहो। आई मुख्य बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर अन्या ताई कोन आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम जी करीबी जनरल स्टोर से मिली रही है या कोना मुख यो भी लाजमी बुधाए जो ठीक है। गुड़िया अब बुढ़िया हो चुकी है न बाबा, गुड़िया की बुढ़िया थे मैं यहाँ थोड़ा अरसो लगे। अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी है स्वीटी। अच्छा नूर फातिमा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम नूर फातिमा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। आज मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं शहर जेकब आबाद से, भाईजान खुशामदीद। अच्छा तारिक भाई लिखते हैं कि अदी सिद्रा अली नवाज भाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अली नवाज भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, अली नवाज भाई आपको वेलकम। जो हलवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे भी कौन मानू वटन था कौन नथा वटन बुधायो तो सही कुटकी नो बाबा मानन के छोने था वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एडी भली क्रीम ताहे बुधाया थी तो ता नथा वठो या सदा जका नहीं या सरासर ना इंसाफिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जको फायदो आ ना वो ताके मिलंदो आई जरी ता इस्तेमाल करना ताके खबर पंदी बाबा सिद्रा एतरो छो बुधाए थी आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूला है ना के डॉक्टर्स ठायो आ है तो तमा के या भी टेंशन करने जी जरूरत ना है तो बाबा असन जी स्किन खराब थी सके थी या असन का भी क्रीम ना ही लगाइंदा तो तमा अगर का भी क्रीम ना ही लगाइंदा तो तमा एक दफो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो माल करी दे सो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम सब नी जलाया है यानी कि मर्द मायूं हर को हणी सके थो।

अच्छा दर्दे दिल लिखती है कि आंखों में ठहर गया वो शख्स है जो हकीकत में कभी हमारा था ही नहीं। अली सब लिखती है कि माशाल्लाह मेरे साथ मुख्तियार मंगी भी आपका शो सुन रहे हैं, उन्हें भी वेलकम कर दें सिडो। मुख्तियार भाई को वेलकम कहते हैं दिल से, बहुत रिस्पेक्ट है भाई के लिए, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और लिखते हैं कि मुख्तियार भाई को मैं अपने पैसों से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले दूंगा, जरूर आप उन्हें लेकर दीजिएगा। मुख्तियार भाई को भी बोलिए कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहे, उन्हें पता चलेगा भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वो कितनी कमाल की प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के जब वो गाने बनाएंगे ना तो आए हाय छा जाएंगे।

है कि आप बातें बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे बताइएगा, और कौन कौन लोग हैं जो हमारी भाई इस महफिल में बैठे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं। क्या बात है भाई, हथम अधी कहो। अच्छा फहीम भाई कहते कि झंडोमरी वालों को सलाम। ओके जी सलाम आपका पहुंच गया है। अखलाक भाई आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, क्या बात है। नूर फातिमा कहती हानी मेरी एक बात सुने। जी जी बोले, कहती है अम्मी को सलाम कह रही हैं। अम्मी अच्छा मुझे सलाम कह रही, बहुत शुक्रिया अम्मी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फरवानी टॉपिक का जवाब दिया है, टॉपिक इंसान और उसकी लालच। सही है भाई। और मोहम्मद सुमान भाई कहते बुआ आज प्ले करें ये वाला गाना, मैं बिल्कुल आपके लिए लगाती हूँ, एक मिनट जरा सब्र करें। और नूर फातिमा आपने भी गाने की फरमाइश कर दी है, मैं देखती हूँ जी जितने गाने प्ले हो सके लगा देंगे। और रशीद भाई हमारे साथ मौजूद है, रशीद भाई हमें हैदराबाद से सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम। रशीद भाई आपको हैदराबाद में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो परचेज कीजिएगा। अच्छा दर्दे दिल ने लिखा है कि चंदा आज एक सॉन्ग प्ले करना डेडिकेट आयशा एंड माय सिस अलीजा एंड यू, शो सुन रहे हैं शमनी मिलारी का है, एक यार मुंह कयो हो, एक यार मुंह कयो हो, चले यो मिलियो तो हलाय वठूंदा ठीक है। इन खां अलावा तव्हां अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो पिया तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे, पर डी स्किन जो फेस वॉश अञा ताईं अवेलेबल कोन थियो आहे, त डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न उहो बि तव्हां अवेलेबल करायो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से। ऐं हाणे इहा आसानी त तव्हां बिल्कुलु आहे त तव्हांखे नंबर ॿुधायो वञे थो, ऐं नंबर ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन जो फेस वॉश हुजे अवेलेबल कराए सघो था। सो अवेलेबल करायो बाबा, आसानी थी वेंदी तव्हांजे लाइ।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने एंजॉय किया। और चाचा लगते हैं कि ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसका जवाब है क्योंकि वो चीजें खाती हैं, जलती हैं मगर कभी। ओके ओके ओके, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जी, बहुत बढ़िया। और इनका अलावा चौथा आपके टॉपिक का बस सही है, एक आंसर सही था बहुत ज्यादा मत दीजिए। आई तो हमारी झंडू मरी वारन के सलाम नारायण, ठीक है जी, ठीक है। और ये हमारे साथ ही जी भाई पंजल सुमरो, बॉबी खोड़ो, चाचा अब्दुल्ला आपको सलाम दे रहे हैं, उनका भी आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, सभी ये पुराने लिसनर्स हमारे वेलकम कहते हैं।

भाई यो कमाल थवे दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आई अदे ही गानो डेडिकेट बिनन मानन की कयो आए से की दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कन पया अच्छा छाता चो कराची में डी स्किन जो फेस वॉश कोन थो मिले तारिक भाई के चो तारिक भाई के बिल्कुल चो था कराची में तवां जिला डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराई छडीना हिदायतुल्लाह कहते हैं कि आज आवाज कम है सॉन्ग की तुम्हारी तो सही है लेकिन गाना चलाते हो उसकी आवाज कम है सच्ची बताए अब सही है या अभी कमा रही है

0: छोड़ो थी ना जाने गुलाब अभी तो किसी शर्माइन था यो कमाल बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो था वहां भी लगाया डी स्किन ब्यूटी क्रीम है वहां भी सोना थी वो छाजो इंतजार था कयो। अच्छा फहीम भाई कहते कि झंडो मरी वालों को सलाम के साथ मुबारक भी हो क्योंकि झंडो मरी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली थी। ओ यहाँ गाल का यही ना कम जी तमाम भी अवेलेबल कराए सको था पोस्ट के लाके शेयर कर कौन अजू कंजूसू क्यों अव अजू कंजूसू क्यों अव। अच्छा साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ हैं कहते सलाम सिद्रा मुस्कान मुलाल इस्लाम अदर फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना से आज कोई शादी वाला गाना सुना है। ओके जी शादी वाला गाना आपको सुना देते हैं क्या याद करेंगे। किशोर भाई कहते हैं अदा गुड़िया भी करे ना दिल जी रानी हो हानी को नहीं छाती तस्बला हानी आहाद भाई बहुत शुक्रिया आपका। लालू भाई हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया लालू भाई को प्रोग्राम पसंद आ चुका है। अच्छा वही वफाई भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सिद्रा जी क्या हाल है आपके माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम राम जी का बाबा से आपके साथ है बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा ऑनलाइन का मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन फेस वॉश मिल रहा है या फिर नहीं ये हम पूछकर बता देंगे या फिर आप नंबर जो बता रहे हैं ना उसके ऊपर रابطہ करके आप खुद ही मालूम कर लीजिए कि भाई ऑनलाइन आप सेल कर रहे हैं या फिर नहीं। जी भाई ये जो दोबारा से उनको जवानी मिली है ना ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। हाँ भाई ने टॉपिक का जवाब दिया है। ओके अखलाक भाई बोले बोले क्या कहना चाहते हैं। मिदली कहती है कि यादा यादा सिंधी गानों प्ले कर हाजिर कया थी अरे अदा कहती अदा हथ मथे करे छो हाँ ये न चेजा तो एक ओनली त हथ मथे कयो हथ मथे कंदा त ख़बर पवंदी त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था ऐं अगरि ॿई हथ मथे कंदा त ख़बर पवंदी त तव्हां गॾु डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां फेस वॉश बि इस्तेमालु कयो था। सो हाली हिकु हथ मथे कयो अथव मूंखे ख़बर आहे त अञा ताईं फेस वॉश जो यूज़ कोन कयो हूंदो छो त फेस वॉश अञा ताईं सभिनी जॻहि ते अवेलेबल न आहे थियो। सो जॾहिं फेस वॉश बि अवेलेबल थी वञे तव्हां इस्तेमालु कयो त पोइ ॿई हथ मथे कजो ठीकु आहे। हाली हिकु हथ मथे करे मूंखे ॿुधायो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो था जॾहिं थोरी दिलि खे टेक मिले। टाइम थियो आहे न्यूज ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾिठूं था तव्हां कॾहिं न मुंहिंजे हिते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था। सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो ऐं सोणा थियो।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GAFM 88 की आवाज
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har dia jo show. A product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.

0: Sakhar. Police Headquarters Chowk, Police Line Sakhar. Timing Chanchar Khan Khamis Subuh 9 baje ka sham 5 baje tai. Appointment ai vadhik malumat lai hiyari raabto kareo 0326 22 00 440.
1: Sachal ki sar mast dharti,
2: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
1: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हनि मां हिकु आहे। सो पूरे पाकिस्तान में हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं पाकिस्तान में ॿाहिरि जी मुमालकत में बि तव्हांखे मिली रही आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको कमाल आहे न, उहो तव्हांखे तॾहिं मिलंदो जॾहिं तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसंदा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे बाबा, एतिरी ज़बरदस्त क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे, तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि बि आहे, निशानी तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां परचेज़ कंदा त ख़ासि करे जॾहिं दुकानदार तव्हांखे थोरो चूनो लॻाईंदा आहिनि, दुकानदार चूनो लॻाईंदा आहिनि त बाबा उन्हनि वटि अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल न हूंदी, तव्हांखे तव्हां ॻोठ खां असांखे ॿुधो पिया त तव्हांजे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले, त दुकानदार वरी तव्हांखे का ॿी क्रीम ॾेई छॾींदो, चवंदो बाबा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम अथव, हीअ खणी वञो। ऐं तव्हांखे वरी ख़बर न हूंदी, तव्हां पढ़ियल न आहियो या तव्हांखे समुझ न आहे, त तव्हांखे इहा निशानी ॿुधायां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा निशानी अथव बाबा, जेका सफ़ा घणी मशहूरु आहे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डबी जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे। ऐं डॉक्टर माई जो फोटो ॾिसी करे ऐं वॾनि वॾनि अखरनि में डी स्किन ब्यूटी क्रीम लिखियल अथसि, इहा चीज़ जेका आहे तव्हां इन जी नोट करे वठो। ऐं जॾहिं तव्हां वञो दुकानदार वटि त हुनखे चओ बाबा असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾे, ऐं जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे ॾिसो त इहा चीज़ पक कयो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे हुन जे डबी जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे। ऐं डॉक्टर माई जेका आहे बाबा निशानी तौर असां ॾिनी आहे जीअं तव्हांखे ख़बर पए त डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकु मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, यानी कि हिन जे अंदरि को बि केमिकल न आहे। तव्हां बेफ़िक्र थी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, सुहिणा सुहिणा थी वञो, पल पल थी वञो, ऐं पंहिंजो जादू जेको आहे न सभिनी खे ॾेखारियो बाबा, त हाणे तव्हां बि पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु रखो था, हाणे तव्हां बि सुहिणा थी विया आहियो। ऐं हा, इहा ॻाल्हि त विसरी वई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको रिज़ल्ट आहे न, उहो तव्हां सभु हासिल करे सघो था, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो, चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो। सो अगरि आप मर्द हज़रात हैं और ये सोच रहे हैं कि भई हम लगा सकते हैं या नहीं, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों के स्किन के हिसाब से तैयार की गई है, इसे ऑल स्किन टाइप के लिए बनाया गया है। आपकी स्किन कितनी ही सेंसिटिव क्यों ना हो, आप लगा सकते हैं। ये चीज जहन में रखिए कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी शामिल करेंगे। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना जनाब, ये बड़ा कमाल का है, ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश बना है ना कि भाई आप देखेंगे तो कहेंगे भाई ये तो कमाल धमाल है। और डी स्किन फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम की एडिशन की गई है, और हाइलोरोनिक सीरम जो होता है ना, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनके अंदर एड किए जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश के अंदर भी हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, डीपली क्लीन करता है, और आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखता है। तो इस्तेमाल कीजिएगा डी स्किन फेस वॉश, 2-3 मरतबा आप दिन में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह को लगाया, दोपहर को लगाया, रात को लगाया, और फिर रात को आप अच्छे से अपना फेस वॉश करके डी स्किन ब्यूटी क्रीम को भी लगाया, ठीक है। राइमिंग बन गई है तो, और इसी तरीके कार को जब आप फॉलो करते हैं तो यकीन जाने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। अच्छा, तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें मिलते जा रहे हैं, और क्यों ना मिले जनाब, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं, और अपने होने का एहसास भी दिलाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, आपके लिए एक गाना लगा देते हैं, गाना सुनेंगे जी हम शादी वाला, क्योंकि भाई ने बोला ना कि शादी वाला गाना सुना दें, तो भाई जियो कर।

जमाती व्यायाम सो पैनल की तरफ भी अच्छी बैठू था ये हमारे साथ मौजूद है मौलाना इस्लाम अदत झंडो मरी खां अली हसन खास के लिए मंजूर अली खास के लिए गुल बहार खास के लिए यार मोहम्मद खास के लिए भाव तवा जो मोहब्बत हुआ बाबा प्रोग्राम पसंद कर पाया ही तुम प्रोग्राम जो हिस्सों भी बनजी वह है उनके अलावा हमारे साथ है मकसूद मला के दे सिद्रा मुस्कान डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट अमीरों वाला एहसास दे चुका है और मैं खुद अब अमीर लगता हूँ सही से मैं कहा ये मीर क्या अमीर लगते हैं और सिद्रा मैंने सुना है आपकी साइड में जैतून डाढ़ा थींदा है ना आपका तो अपना बाग होगा हाँ हाँ जैतून डाढ़ा थींदा है गोच नूर मोहम्मद कोरकानी से फ्रॉम कादिर बख्श कोरकानी हमारे साथ हैं कहते प्रोग्राम वेरी नाइस बहुत शुक्रिया कादिर भा तांचो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया महबूब अली हमारे साथ हैं मोरो सिटी से कहते कौन से वेलकम खुश आमदी सिस्टर वेरी नाइस योर शो वाइटेशन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन से हमें सॉन्ग सुनाए हदीका क्याने का सो नाइस ऑफ यू ओके मैं हदीका क्याने का कोई भी प्यारा सा गाना आपको डेडिकेट कर दूंगी ये हमारे साथ हैं सामल ढीलू फ्रॉम मोरो फ्रेंड अब्दुल रजाक को सलाम देना चाहता हूँ एंड प्लीज प्ले शमन मिराली रात खामोश आ चंद्र मधोश आ माँ भाजी पसंद हलाने की फुल कोशिश कदम और चाचा खाली तुम्हारे साथ ही पैनल पर ओके चाचा अगर हाने न हलाए तो गानों तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुकून से गानों बुधना सी ठीक है छो तो तुम गानों को जड़ो है घोटकी से गुलशेर मंगरू हमारे साथ है सिस्टर सिद्रा अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप सिस्टर सिद्रा मुझे गाना सुनाओ मुमताज मलाई का सॉन्ग है अच्छा गानो लिखियो आ सही मां कोशिश क्या दी ताजो गानो बुदना सी गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू आपका शो वेरी नाइस है सलाम आपको जी वालेकुम अस्सलाम आपको और ये हमारे साथ हैं जियो चाचा खालिद जियो झंडो मरी खां अली हुसैन खास के लिए मंजूर अली खास के लिए गुलबहार खास के लिए यार मोहम्मद खास के लिए भाव चाहते हो भला तामे का डील बिल थी आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया था कौन झंडो मरी वाला हाल हवाल तो यो अच्छा मकसूद भला कहते सदरा कितना मुश्किल सवाल कर दिया है कितना लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है मैं आपको जवाब ना दे सकूं जवाब जेको तुम्हारे नो आ ना बाबा यो पढ़ने जड़ो आ ही पर छा कयो पढ़ी ना था सकूं बस तमाम मुझे ख्याल है मैं सही जवाब दे छड़ो आ है अच्छा अल्ताफ खोसू जाग जानी चाचू कहते हैं प्लीज प्ले अच्छा गानो लिखियो आ ही डेडिकेट बिस्मिल अजरा खोसो एंड मी थैंक्स चाचू थैंक्स महबूब अली मोरो सिटी से कहते हैं अच्छा जवाब दिनो आ है सही सही सही घोटकी से गुलशेर मंगरियो सिद्रा गाना जो लिखा है वो सुनाओ हाजिर हाजिर हाजिर अब्दुल्ला महर भाई मीरपुर खास से कहते हैं डेडिकेट माई सिस्टर साइमा मीर को एंड सिस्टर दर्दे दिल को निदा अली डेडिकेट आपको सॉन्ग होमेरा चन्ना ओके अब्दुल्ला भाई अज तुम मतलब डेडिकेशन सेंड कर छो सही डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया था न हबीबुल्ला थेबू कहते हैं शो तुम्हारा लाजवाब है थैंक यू वेरी मच प्यारा भा मुनवर मुगल आ चुके हैं कहते सलाम बेना सिद्रा मुस्कान और लाड़काना वालों को वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई कभी कभी आकर ऐसे बिल्कुल सलाम दुआ किया करें क्या हाल चाल है ठीक ठाक है मजे में वरियाम वाली हमारे साथ कहते हैं सिद्रा है ना प्यारे शो में दिलसा सिकसा सलाम था कयूं एंड वीआईपी सफा शो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जियो करेस बिल्कुल बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल ही अलाए चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना वारन का तो पुछो

तव्हां जे घरनि में बि शादी आहे या तव्हां जी शादी थी रही आहे, डीस्किन ब्यूटी क्रीम खे न विसारिजो। डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो जीअं तव्हांखे उहे रिज़ल्ट्स मिलनि जेके तव्हां हासिल करण चाहियो था। तव्हांजे चहिरे ते एॾो वीआईपी नूर अची वेंदो, तव्हां खां माण्हू पुछंदा ॿुधायो त छा इस्तेमाल कयो अथव, कहिड़ा फेशियल कराया अथव, ऐं तव्हां हुननि खे चओ बाबा फेशियल जो टाइम असां वटि त कोन्हे को, शादी जो घर आहे, इलाही सारा कम हूंदा आहिनि। तव्हां बसि डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा, तव्हांखे मिलंदा उहो रिज़ल्ट जेको सफ़ाई महांगा महांगा फेशियल कराइण खां पोइ तव्हांखे मिलंदो आहे। सो डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो कमाल अथव।

बातें, गाना तो बहुत कमाल का था, हमने एंजॉय किया। और यहाँ पर फराज देहरी हमें सुन रहे हैं, उसामा और फराज की तरफ से सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाइयों को वेलकम हो गया।

बहुत भाई लगते हैं कि ऐसा डोडियों भी पांचियों कहीं हुआ है ना। अल्लाह वाह सही वाह तरक्या भी अच्छा। हाँ गुलाबी जोड़ी जी वाकई भाई बच्चे पे वीडियो भी ओड़ो हो अच्छा शब्द लगते हैं कि नाई जब आप सॉन्ग के बीच में बात करती हैं तो अच्छा लगता है कुछ मानो उनकी वरी सुठो नाए लगन दो पर असा ही बलू लगन दो गाला इंदासी ने विचते तो पो बाबा ये ताजा मैसेज केर पढ़न दो डीस्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में केर बताइन दो।

की याद आ, एक एक मरतबा कॉमेंट में लिखो डी स्किन ब्यूटी क्रीम। सुन लगे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अच्छा, उनके अलावा तमाम पोस्ट के लाइक शेयर करो जिन अन्य तरीकों कयो है।

यादा यादा और अखलाक भाई कहते हरू भरू हथ मथे कराया थी हरू भरू को कराया बाबा खबर पई तो तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर अमानुल्लाह दल हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम भाई मिदड़ी लिखती है कि हिरा हाशमी माय फ्रेंड मैं क्यों भला पीछे रहूं ओ यह गाल हमारे साथ उसामा और फराज हमारा शो रोज सुनते हैं बहुत शुक्रिया उसामा और फराज आप दोनों को वेलकम कहते हैं

भाई असां के सब कुछ याद आए ताकि याद ना आए तो सही है ताकि बस डे स्किन ब्यूटी क्रीम याद हो जाए। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं आपका प्रोग्राम नाइस है। शाहिद भट्टी और सिकंदर मक्सी शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। मालिक अच्छा नजर हुसैन मलिक भाई हमारे साथ हैं, कहते हैं लाजवाब प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया मलिक भाई। अली नवाज सारकी हमारे साथ हैं, कहते हैं मोहम्मद नवाज जनरल स्टोर ठुल में डी स्किन मौजूद है। बस सही वाह मोहम्मद नवाज जनरल स्टोर ठुल में तव्हां खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी बाबा, तव्हां वञो ऐं वठी अचो। अच्छा नज़र मोहम्मद भट्टी भाई छा था चो आज राहत फतेह का गाना सुनाए, मां बिल्कुल कोशिश कयां थी तांगी गानो बुधराईंदासी। फरवा कहती आप ही प्लीज सॉन्ग रिक्वेस्ट था यकीन की आएगी ये राता कभी, मां दिसां थी हलाए वठूं था। और अलीशी बिरोही हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर आप कैसी हैं? आप हमारे साथ मीरपुर बठोरो शो रोज सुनता हूँ लेकिन मैसेज आज किया है, गुड हो रहा है आपका शो, बहुत शुक्रिया अलीशी बिरोही भाई, वेलकम कहते हैं आपको। अच्छा हजार जतोई भाई भी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम हजार भाव, हजार को लोग कराया कराया था ड्रेस कंप्यूटर क्रीम जो सही है।

अच्छा फरवा कहती हैं आप ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट वीआईपी मिला है। हाँ जी बिल्कुल मेडिकेटेड फार्मूला है, इसीलिए तो कहती हूँ सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। निजाम भट्टी कादरी भाई हमें सुन रहे हैं मटियारी खां, निजामुद्दीन भट्टी और अली शेर भट्टी, फरहान अली भट्टी, न्याज मोहम्मद भट्टी, जाहिद भट्टी, फराज भट्टी, बुधू पया अदी, अजय तासांजी फरमाइश पूरी करियो, शमन मिराली जो सॉन्ग बुधरायो, हाँ सर शमन हलायूं था। अच्छा चाचा कहते लगाया पयो लगाया बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ओ ये लगायो लगायो बाबा शादी केंसी बिनोई उमड़े ये गानो हलायो सी। निजाम भट्टी कहते यहाँ क्रीम घणे मिलंदी मटियारी माता सा वारे। अलाए अगते तां सा लिखियो पर मटियारी में तां के मिली वेंदी, तां पांजे करीबी जनरल स्टोर सां वनी पुछा कराई सघो था। और फराज डहरी भाई जेको आहे वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे पयो, वास सही वायु त कमाल थी वयो। ईअं ई बाबा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। हिते टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, जल्दी मोटी तव्हां ॾे अचूं था, तव्हां कारी न वञिजो, इते वेठा हुजो, मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड इन की ब्लेस ने आप सुन रहे हैं वाई टेंशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। तो सुनिएगा और साथ दीजिएगा पूरे पूरे 3 बजे तक।

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought. It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: मोरू,
3: नौशहरों,
2: मीरपुर खास,
3: लाड़काना,
2: सक्खर
3: गूंज रही है हर जगह पर.
2: सिंध की आवाज
3: जीए FM 88 नेटवर्क.
4: तो आज ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन तो कोई तवां लाए आए एक बेहतरीन मौको. सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाओं जारी हैं. 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA. खास स्कॉलरशिप्स मौजूद. बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री. जरे तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखला फीस. आई फीस सेमेस्टर सिर्फ

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तकलीफ बात जी एफ एम का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03009312700।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फातिए मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीएफएम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

कितने मासूम है लड़के शादी का गाना सुनकर ही खुश हो जाते सही बात है। चलें जो जो लड़के बेचारे चाहते कि भी हमारी शादी होनी चाहिए, तो आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई ना, तो वजह ये है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का अभी इस्तेमाल कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के फौरन बाद आपको क्या ही जबरदस्त और मस्त सा रिजल्ट मिलेगा, जो देखकर आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का अभी इस्तेमाल कीजिए, मर्द हजरात खवातीन हर कोई लगा सके। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यह खास काल आए तो बाबा ही हर स्किन जी मथा लगाए सकजन था। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो का टेंशन जी गाली कोने का, ता सब मानू लगाए सको था, आई पांजी खूबसूरती में इजाफो आने सको था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी यह गाल मुके डाडी सुठी लगनिया, तो बाबा इनके हर स्किन जलाए तैयार कयो या ये मेडिकेटेड फार्मूलो।

बिल्कुल जी, सदको ही विना जरिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा. खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है जनाब, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि भाई खूबसूरत तो हम बनना चाहते हैं, खूबसूरत तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि अगर हमने ये प्रोडक्ट लगा लिया तो हमारी स्किन तो सेंसिटिव है, हमारी स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं या फिर हमारी चेहरे की स्किन खराब हो जाती है, रेड पड़ जाती है या बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाती हैं जो आप नहीं चाहते कि भाई हो, इसीलिए आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए, आपकी स्किन को हमेशा खूबसूरत रखने के लिए, आपके चेहरे पर वो रिजल्ट्स लाने के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने के बहुत सारी वजूहत है. सबसे पहली वजह तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स हैं. जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ऐसे मिलते हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये बजाय तो नाइट क्रीम है लेकिन ये 2-in-1 फार्मूला है. इसका मतलब ये होता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लगाएंगे तो रात के टाइम नाइट क्रीम की तरह, लेकिन रिजल्ट्स आपको फेशियल वाले मिलेंगे. अब इस चीज को मैं जरा क्लियर करती जाऊं कि बहुत सारे लोग अब मुझे ये सुन रहे हैं, कहते भाई फेशियल का रिजल्ट मिलेगा, फेशियल की चीजें इसके अंदर एड है, तो अगर वो लगाएं तो वो क्या इस तरह से लगाएंगे कि जब आप क्रीम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो फेशियल की तरह आप मसाज करने ना लग जाए. मसाज ना किया करें. अगर आप कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करें, कोई भी ब्यूटी

डी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर मसाज नहीं करना होता, बस सुकून प्यार से लगा दिया करें। डी स्किन ब्यूटी क्रीम खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी, सुकून से लगाइए। हाँ, इसके अंदर चीजें फेशियल वाली जरूरी है, के लिए फेशियल नहीं है, इस चीज का जरा ख्याल रखा करें। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत से बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल चुके होंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आप मर्द हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और नंबर आप लोगों को बता रही हूँ जो डायल करके आप अपने करीबी जनरल स्टोर के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं। तो डायल कीजिए 07384309। बड़ी 332 है 73 84 309। अब यो नंबर आहे 03125025907। बड़ी 312 हाँ 50 25 है 970। बिल्कुल जी, नंबर तुम्हारा डायल करी पांजी करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था अवेलेबल करायो। सुना सुना थी वनो

जी सोना मुझे जाना ही तू अलाए शागते हुए न खाए लावा अगर तवा भी पानी करीबी जनरल स्टोर से वनो त दी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी वठिए जो ठीक है आपके कमेंट्स ऊपर चले गए हैं क्योंकि काफी तेजी से ये ऊपर भागते जा रहे हैं दोस्त अली मल्हा हमें सुन रहे हैं ओके जी दोस्त अली मल्हा भाई वालेकुम अस्सलाम तांचो मोहब्बतवान प्रोग्राम उदो भैया चाचा कहते हैं सर लगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा ओए चाचा हजार भाई कहते हैं कि हाँ सिस्टर जब आप किसी सॉन्ग के साथ पोएट्री रीड करती हो तो और भी प्यारी लगती है ये तो लेटेस्ट न्यूज है अच्छा हजार भाई कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद जियो करे ओ ये बाबा जियो करे निदली कहती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम हल्लुड़ी इदा दफा लिखी चलो तस छोकरी है निदा जो है सभी की कसर कड़ी छी सभी जो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक निदा पांच मैसेज में लिखी छो है ऐसो निदड़ी की कड़ी तवी फिक्र है अच्छा पोस्ट के लाइक शेयर कर अना ती अगर कौन कर हाँ जी ले फड़ मेरी बाह माइया मैं मिन्नत करा माइया डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले माइया हाँ जी ख्याल ही ख्याल आ बाबा तरी तो तांगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधायूं था समझूंगा करो अच्छा ये फराज डहरी भाई कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का क्या कमाल का रिजल्ट मिला है ओ ये बाबा ओ ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगा रहो और फहीम भाई भी कहते हैं कि सर लगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम साइए न हाँ हाँ परवा कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम से असा जो सिर लगे तवां जे करे आ पी हा बिल्कुल बिल्कुल और हजार भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड वाइट एच दोनों हाँ जी दोनों दोनों कदी कदी मुखा वाइट एच विसरी वेंदो पर तां याद जा रहे छड़ींदा आयो अच्छा ही सजो महीनो जो है यानी कि पूरा मंथ थी वेंदो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में प्रोग्राम होंद वरी असा जो नेक्स्ट मंथ में इंदा तो उन्हें सागो तला डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाइटेश बिन्हीं प्रोडक्ट के बारे में तक बुधाईदी ठीक है सो हाली तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधी वो तबर पे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केडियो खास गाल जी तक मिलंदी जैसे तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम

अच्छा ताड़ी हाणे त उॾामी वञे अहिड़ो आहे पहिरीं मां हाणे थी कॉमेंट ॾिसां न त पहिरीं खे उॾारियूंसि हा सम्झूं था अच्छा दोस्त अली मल्हा भाई वालेकुम अस्सलाम तव्हांजो मोबदू आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया नदी कहती कि हज़ार खत्म भी हो गया हाँ बाबा हज़ार खुलो कराया तो मिंट खत्म थी वेंदो आहे और अदर चाहे तो मोट 500 आहे 500 बचा तई हलड़े और हज़ार भाई कहते हाँ ब पंज 500 जा नोट खुलिया कराया आहिनि हज़ार इहो भी सही आहे निज़ाम भट्टी भाई कहते हैं कि जी बिल्कुल तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे पंहिंजे ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणे सघो था सो मर्द बि लॻाए सघनि था डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं मायूं बि लॻाए सघनि थियूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे त जेके माण्हू वरी फेस वॉश जा शौक़ीन हूंदा आहिनि या वरी चवंदा त बाबा असां क्रीम न असां फेस वॉश लॻाईंदासीं त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश लॻाए सघो था डी स्किन जो फेस वॉश बि सफ़ा मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिलंदो सो तव्हां वञो ऐं वठी अचो जी ॾाढो भलो असां गानो ॿुधोसीं फाइज़ा जी आवाज़ में हुयो हीउ वारो गानो ॿुधंदासीं ज़ामिन जी आवाज़ में लैला लैला लैला ओ वेली भलो गानो आहे चओ त ॿुधूंसि

मूड था कि कोई सैडी और कोई स्लो सा गाना नहीं लगाएंगे प्रोग्राम में, तो इसी वजह से बस गाने अच्छे अच्छे लगाए. और रमजान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम. और लैला सलामत कहते हैं बहना कैसी हो, शो नाइस है, सॉन्ग सुनाए. तमाचा गाना तो कभी कभी मुझे समझ में ना ही नींदा. सो रमजान भाई आज मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुध पाया निजाम बैठी ना कि प्रोग्राम बने पे. थैंक यू. अच्छा कामरान भाई कहते हैं कि जी स्किन ब्यूटी क्रीम ये सीक्रेट. हाँ जी तुम्हारी खूबसूरती जो सीक्रेट आए तुम्हें भी जी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करें वह नेचुरली खूबसूरत थी वजह. अली शेर ब्रोही कहते हैं सदरा सिस मैंने आपका शो 10 लोगों को शेयर किया है, अब मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले करें. हाँ जी चलिए गाना ये इंजॉय कीजिए.

अच्छा हाँ जी एम बलोच मीरपुर खासी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया भाई। अब्दुल गफार भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको भी, थैंक यू सो मच। कहते लाजवाब शो, हाँ जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम में डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता है तो लाजवाब ही होगा ना, और मेलसी में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा। अच्छा दर्दितुल कहती है चंदा मैं भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती हूँ, बहुत अच्छी है, अमेजिंग, ओ ऐसे ही लगाते रहिए। और कहती नाइस सॉन्ग शमन का। अच्छा रमजान भाई तमहा शायरी लिखी है, एक दर्द मुसलसल मुझे सोने नहीं देता, दिल सबर का आदि मुझे रोने नहीं देता, मैं उसका हूँ ये राज तो वही जान गया, वो हर किसी का है ये सवाल मुझे सोने नहीं देता। आई अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि शबाना कोयल चवंदी आए शादी बर्बादी आए मानू छड़ू बलो आए, वो ही जो हेडी दुनिया शादी करे थी तो न करे, करे बाबा शादी करे, ये वो लड्डू है जो खाकर भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है, तो मुझे लगता है कि खाकर पछताना चाहिए। ओके सो शाहिद बब्बर का गाना लास्ट में मैंने लगा लिया है जो कि बड़ा अच्छा होने वाला है। और मोहम्मद अली हमें सुन रहे हैं मोरो से, बहुत शुक्रिया। घोटकी से गुलशेर मंगरियो, गाना जल्दी हलाए भुख लगी आ, गाने से भी भुख लगंदी आ छा भला। अच्छा किशोर भाई ने शायरी भेजी, कहते कभी ये दुआ कि वो मेरा है फकत, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये दुआ कि उसे मिल जाए सारे जहां की खुशियां, कभी ये डर कि वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना कि बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर कि उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजर उसका, कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू कि वो मांगे जो उसे मिल जाए, कभी ये वसवसा कि उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं। ये शायरी मैंने इतनी पढ़ी है कि मुझे लगता है कि अब मुझे याद ही हो गई है। और बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। झंडो मरी में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है, आई वाकई यो मां कल ही डिठो तहकड़ी दादी जो नालो किश्वर हुयो, आई उनके दादी ने उनके दादा कोठिन प्यार ना दद्दा।

न बाबा न चार्जो चे तो क्रीम जो मसाज तो लाजमी न मसाज न जो जरी तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो ना तो उनके आराम सा प्यारन प्यारन हल्कन हल्कन आंगरन सा लगायो ये लगायो तो क्रीम थोड़ी थोड़ी तां जे चेहरे ते नजर अचे मसाज न कंदा कयो ठीक आ खास करे नाइट क्रीम जेका तां लगाय था उनते मसाज बिल्कुल भी न कंदा कछ तो जदी ना मसाज कंदा ना तो थोड़ो मामलो खराब थी सके तो सो मसाज न कंदा कयो मसाज सिर्फ फेशियल में कबो आ है ही तां के फेशियल वारो रिजल्ट दीनी पर ही फेशियल ना है सो ये 2 इन 1 फार्मूलो आ है फेशियल जाने जी अंदर यानी के फेशियल जो चीजों एडे थेला है पर ही बजाय नाइट क्रीम है

हाँ जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद। अच्छा नूर फातिमा, तव्हां लाइ कहिड़ो गानो चयो हुयो सुहिणी। तारिक हुसैन लोहर भाई मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। निधि कहती कि हाँ ना, लोगों को लिखना नहीं आता, आई थिंक इसीलिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मैंने लिख दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा नूर फातिमा कहती है कि हानी, मेरी खाला भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करती है, खाला भी करती है, तो अब आप भी यूज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। निधि कहती है सलाम टू साइमा मीर, उसको बोलो कब तक मैसेज करोगी, पोस्ट पर आओ धमाका करते हम। साइमा मीर जो है ना, अन्या ताई वो बटन वालों मोबाइल हिलाई दिया। साइमा मीर फेसबुक पे ना ही। महबूब अली मोरो सिटी से मेरे साथ मौजूद है, महबूब भाई वेलकम। भाई जामिन अली शादीन ते बींदो आहे छा? हा पर सब सिंगर ईंदा आहिनि, जामिन बि ईंदो हूंदो। सही ॻाल्हि आहे। अच्छा मंसूर हुसैन अंसारी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद। मोहम्मद जमान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। अच्छा टॉपिक का जवाब बता देते हैं, तो सवाल जो मैंने आज किया था वो क्या है, जिसका पेट भरा हुआ होता है फिर भी वो खाती जाती है, तो उसका जवाब जो था वो आग था। और मुझे नहीं याद आ रहा कि सबसे पहले जवाब किसने दिया था, तो बस वो पांजे भर में खुश थी मैंने, तो यस आई एम विनर। जी बिल्कुल, सभी लगाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और अमानुल्लाह महर भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। निधि कहती है जारू की दादी है ना, उसको बोलते हैं दद्दा। हाँ जी पता नहीं वो ड्रामे में है ना, उसको बोलते हैं। और मेरी छोटी भांजी बोलती है दद्दा दद्दा। तो बस मैं जब भी वो दद्दा सुनती हूँ तो मुझे मेरी भांजी याद आ जाती है। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत। रसूल बख्श बलोच भाई वालेकुम अस्सलाम। और बस हाँ बस क्यों चुप क्यों, पोस्ट के लाइक और शेयर करें छजो। सो वरी तव्हां सां मिलूं था 5 बजे वारे प्रोग्राम में। सो पंहिंजो ओ रुसरो ख़्याल रखंदा, ऐं जी जी अञा ताईं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कोन कयो आहे, बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो। ऐं मिलूं था 5 बजे, पंहिंजो ओ रुसरो ख़्याल रखंदा। मोकिलाणी नाही बाबू सिंह, सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin to Raz. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सीओ की ना वो गवर्नर रूल, यही रूट है और क्या रूट है, अनलेस के कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबादी के लिए तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को, खान साहब का सपोर्ट उसको हासिल है, पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है, खान का मैंडेट चलता है, खान के डायरेक्शन चलते हैं, किसी और के कहने से कुछ नहीं।
1: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाइ ही आहे, सुहेल अफरीदी के बानी है, पार्टी की हिमायत हासिल है, केपीके में एमरजेंसी लगंदी, नई गवर्नर राज लगंदो। इस्लामाबाद में मीडिया से गालंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चवाए डायरेक्शन रुगो बानी की हलंदी है, लॉन्ग मार्च जो रूट तो इस्लामाबाद जो ही है।
2: किस तरीके से वो अली बिन गंडापुर के पास गए जिसको वो आलाकार कहते थे, मुख्तलिफ अलकाबाद से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पे सुहेल खान अफरीदी के पास ये सकत है कि वो ये लॉन्ग मार्च कर सके। आई थिंक पॉलिटिकली वो बहुत वीक है।
1: पीटीआई वारा सियासी तौर ते घणो कमजोर थी विया आहिनि, लॉन्ग मार्च करे न सघंदा। सुदसमा वारे वफाकी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त सुहेल अफरीदी जंहिं तरीक़े सां अली अमन गंडापुर वटि वियो सभिनी जे साम्हूं आहे। पीपल्स पार्टी जे नेहर हुसैन बुखारी चयो आहे त सूबाई हुकूमत जी नाकामीअ ते गवर्नर राज लॻी सघे थो। वफ़ाक केपीके में गवर्नर राज बाबति मुशावरत कई त आइन मूजिब मशवरो ॾिनो वेंदो, केपीके में गवर्नर राज आइन खां मथां न हूंदो। ईरान की सूरतहाल घणी खराब है, हथियार फिटा कंदा या न खबर ना है, जेस ताईं मां आया उत्तर कोरिया ठीक रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया सां गालाइंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आया जेको किम जोंग उन खे पसंद कंदो आया ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका जी बरतरी बरक़रार आहे, जेका बरक़रार ई रहंदी। निगरानीअ लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहियूं। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकचीअ जी साल्स मुल्क खतर जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात, कतरी सालसन ईरानी तजवीज़नि ते अमेरिकी जवाब अब्बास इराकची हवाले कयो। अब्बास इराकची अमेरिकी जवाब ते ईरानी क़यादत सां मुशावरत कंदो। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रंप दलदल में फासी पियो आहे, ईरानी तजवीज़ू अमेरिका वटि पहुची वियूं आहिनि, फ़ैसिलो ट्रंप खे करणो आहे। ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न कंदो। आलमी मुआहिदनि खे हिकु तरफ़ो ख़तम या मुअतल नथो करे सघिजे, तय थियल मुआहिदनि ते अमल करणु बि लाज़िम हूंदो आहे। सिंतास मुआहिदे बाबति आलमी सालसे अदालत में पाकिस्तान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे। सुद समाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त सिंतास मुआहिदे खे ख़तम तोड़े मुअतल नथो करे सघिजे। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे जे तहफ़ुज़ लाइ घुरबल क़दम खणण लाइ तयारु आहे। पाकिस्तान पंहिंजे पाणीअ जे हिसे ते को बि ठा न कंदो। सिंतास मुआहिदो पाकिस्तान जे बका जो मसलो आहे। सूबन वारी ॻाल्हियुनि ते ध्यान न ॾियणु घुर्जे, न ई परेशान थियणु घुर्जे। मोहसिन नक़वी जे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां का मुलाक़ात न आहे थी, मुलाक़ात वारियूं ॻाल्हियूं ग़लति आहिनि, ग़लति ख़बर सबबु बदनामी थिए थी, ग़लति ख़बरुनि खे कीअं रोकजे, साफ़ी मशोरा ॾियनि। कराची प्रेस क्लब में साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे शर्जील इनाम मेमण चयो त नवनि सूबनि बाबति पीपल्स पार्टीअ जी पॉलिसी वाज़े आहे। सिंध असेंबलीअ ते फ़ैसिलो अॻी ॾेई चुकी हुई, हाणे गोड़ थियो त वरी बि फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। पाकिस्तान दहशतगर्दीअ जो शिकार रहियो आहे। लॉन्ग मार्च कंहिं मक़सद लाइ कया वेंदा आहिनि, पर पीटीआई जो मुतालबो रुगो संदन बानीअ खे आज़ादु कराइणु आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन, चार दहशतगर्द मारिजी विया, हथियार हथ कया विया आहिनि। केपीके जे इलाइक़े मीर अली में फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारिजी विया। टांक में पटवार खाने खे टारगेट करण जी कोशिश नाकाम, पंहिंजे ई बम फाटण सबबि हिकु दहशतगर्द जहनम भेड़ो कयो वियो। बलूचिस्तान जे सोराब ज़िले में बि फोर्सिस जी हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई कई वई, हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां केपीके ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयुनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई। मोहसिन नक़वी चयो त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा। सोमालिया में सामूंडी धाड़ेलनि जे कब्ज़े हेठि बहरी जहाज़ खे छॾाइण लाइ सोमाली फ़ौज जो ऑपरेशन, जहाज़ ते मौजूदु पाकिस्तानी अमले मां कुझु जे मारजण जा इतला मिलिया आहिनि। जहाज़ ते मौजूदु पाकिस्तानी अमले जे वारसनि मूजिबि सोमालिया फोर्सिस जे ऑपरेशन में 5 ॼणा मारजी विया आहिनि, जन मां टे पाकिस्तानी आहिनि, संदन लाश ख़राब थी रहिया आहिनि, मदद कई वञे। गंबट भरसां आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पैसनि जी ॾेती लेती तां झेड़ो थी पियो। हिकु ॼणो क़तल, ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। बारो शहर में धुरियुनि जे पैसनि जी ॾेती लेती तां झेड़े दौरान फायरिंग में गोली लॻण सबबि अजीब वारी जो मारिजी वियो, ॿ ॼणा ज़ख़्मी थिया। लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। सिंध में निजी क्लिनिक्स हलाईंदड़ डॉक्टर्स जो FBR पारां पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम लागू करण ख़िलाफ़ सूबे में क्लिनिक्स बंदि करे एहतजाज कयो वियो। कराची, हैदराबाद, खैरपुर ऐं ॿियनि शहरनि में डॉक्टर्स एहतजाजनि क्लिनिक्स बंदि रखियूं। डॉक्टरनि मेडिकल सेंटर क्लिनिक्स बंदि करे ॿाहुनि ते कारियूं पटियूं ॿधी एहतजाज कयो। डॉक्टर्स मौजूदु तिबी ख़िदमतनि ते FBR जो पॉइंट ऑफ सेल वारो निज़ाम कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे, फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। AI खां पी खे क़तल करण जो तरीक़ो पुछंदड़ जवाबदार 14 ॾींहनि जी रिमांड ते जेल हवाले। पुलिस जवाबदार खे लाहौर जे मक़ामी अदालत में पेश कयो। जांच आफ़िसर अदालत खे ॿुधायो त जवाबदार वालिद जो अकेलो पुटु आहे। वालिद मूजिबि संदसि पुटु उबती सुबती जांच कंदो रहंदो आहे। अदालत जवाबदार खे रिमांड ते जेल मोकिले छॾियो। मलीर में पोर्ट कासिम वेझो हथियारबंदनि जी खानगी कंपनीअ मां फुर हथियारबंद निजी कंपनी जे गार्डन ऐं पुलिस अहलकारनि खे रसनि सां ॿधी फुर करण बाद फरार थी विया। ज़रियनि मूजिबि 15-20 हथियारबंद कंपनी जी भित टपी ड्यूटीअ ते मौजूदु ॿिनि पुलिस अहलकारनि ऐं गार्डन खे जरगमाल बणाए रसनि सां ॿधो। फोरुनि सरकारी ऐं ज़ाती हथियार, मैगज़ीन, गोलियूं ऐं मोबाइल फोन फुर कया। हिकु गार्ड पंहिंजा हथ खोलण बाद ॿियनि साथियुनि खे आज़ादु कयो। वाके जो केस दाख़िल। हैदराबाद जे लतीफ़ाबाद वारे इलाइक़े में 14 वरनि जे नींगर चोरी इल्ज़ाम हेठि वेशाणो तशदुद कयो वियो। शहरनि चोरी जे इल्ज़ाम हेठि नींगर खे थंबे सां ॿधी तशदुद जो निशानो बणायो। वाके जी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी वई। पुलिस जो चवण आहे त मुतासिर नींगर खे हथु कयो वियो आहे। तशदुद कंदड़ जवाबदारनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वेंदो। ऐं दुबई खां तेल वींदड़ मुसाफ़िर जहाज सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। समूरा मुसाफ़िर ऐं अमलो महफ़ूज़ रहिया। इसराइली मीडिया मूजिबि जहाज हिकु पायलट जहाज खे क्रैश करण जी कोशिशि कई, जंहिंखे ॿिए पायलट नाकाम बणायो। पायलट साथी पायलट खे रोकण ते चाकू हणी ज़ख़्मी बि कयो। सऊदी अरब में इम्कानी तौर जहाज खे तबाह करण जी कोशिश कंदड़ पायलट खे हिरासत में वरितो वियो। मुसाफ़िर जहाज दुबई खां तेल अवीव वञी रहियो हो।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठ अहम इजलास करूँ वजीर मोहसिन नकवी अता तारण तलाल चौधरी बेहनि की शिरकत मोहसिन नकवी वजीर आज़म के अमन अमान की सूरतहाल तकरीर ज़रियन मूजिब के पी की सूरतहाल गवर्नर राज समेत एमरजेंसी वे मामले से भी ख्याल की डेवट कई वही वजीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करने इम्कान मुल्की सियासी सूरतहाल खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान वाली सूरतहाल गौर किया
1: सूबाई हुकूमत की उसे कंट्रोल करने में अदम दिलचस्पी और नाकामी वो वजह है जिसकी वजह से आर्टिकल 232 के तहत एमरजेंसी के लिफाज की बात हो रही है और पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी इसमें जुटी में काउन करेगी।
2: मुझे लगता है कि ये अब सियासी तौर पे बहुत कमजोर हो चुके हैं। जिस तरीके से वो अली बिन गंडापुर के पास गए जिसको वो आलाकार कहते थे मुख्तलिफ अलकाबाद से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पर सुल्तान अफरीदी के पास ये सकत है कि वो ये नॉर्मल कर सके। आई थिंक पॉलिटिकली वो बहुत वीक है।
0: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज या एमरजेंसी वफाकी हुकूमत की मशावरत आखिरी मरहले में दाखिल वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी के पी में एमरजेंसी लगाने से संजीदा होड़ थियण की तस्दीक कर छी। तारिक फजल चौधरी है के पी में बदंदड़ दहशतगर्दी और सूबाई हुकूमत के कम न कर सबब आइन के आर्टिकल 232 से गौर कर रही है। पीपल्स पार्टी भी जरूर साथ दी। वफाकी वजीर अतला तार है पीटीआई कमजोर थी है सुहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च करे न सकंदो का भी परेशानी ना है।

0: सी होगी ना वो गवर्नर रूल, यही रूट है और क्या रूट है, अनलेस कि कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबादी के लिए तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब का सपोर्ट उसका हासिल है, पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है, खान का मैंडेट चलता है, खान के डायरेक्शन चलते हैं, किसी और के कहने से कुछ नहीं।
1: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई आहे सुहेल अफरीदी के बानी ऐं पार्टी जी हिमायत हासिल आहे के खैबर पख्तूनख्वा में नई एमरजेंसी लॻंदी ऐं नई गवर्नर राज लॻंदो। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त डायरेक्शन रुगो बानी जी हलंदी आहे, लॉन्ग मार्च जो रूट त इस्लामाबाद जो ई आहे। केपी में सूबाई हुकूमत की नाकामी से गवर्नर राज लगी सके तो वफाक केपी में गवर्नर राज बाबत मुशावरत कई तो आइन मौजिब मशवरो दिनों वो केपी में गवर्नर राज आइन का मथाहों न हों। पीपल्स पार्टी के मरकजी अगवान नैयर हुसैन बुखारी है खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत ही खराब है, पीटीआई के भी रिलीफ मसामत सा न पर अदलिया में मिलो, पीटीआई जो रवैयो सुठो ना रो, एहतजाज के नारे से शहर से हमलो कर कबूल जुगो ना। ईरान की सूरतहाल घनी खराब है, हथियार पिटा कंदा या न खबर ना जिस तई मां आया, उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग उन ठीक रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया सां गालींदे अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप चयो आहे त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंद कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका जी बरतरी बरक़रार आहे, जेका बरक़रारी रहंदी निगरानी लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहियूं। ईरानी परडे वज़ीर अब्बास अराग़ची तजवीज़नि ते अमरीकी जवाब मिलण जी तसदीक करे छॾी। ईरानी परडे वज़ारत जे तर्जुमान फातिमा माजरानी चयो आहे त अब्बास अराग़ची अमरीकी जवाब खां काबीना खे आगाह कयो आहे, अमरीकी तजवीज़ ख़ते में जारी जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां आहे। आर्मी माहिदन के एक तरफो खत्म या मुअत्तल नथो करे सकजे, ते थियल माहिदन ते अमल करण भी लाजिम हुंदो आहे। सिंध तास माहिदे बाबत आलमी सालिसी अदालत भी पाकिस्तान के हक में फैसलो ॾेई चुकी आहे। सुध समा वारे पाकी वज़ीर तौला तार चयो आहे त सिंध तास माहिदे के खत्म तोड़ी मुअत्तल नथो करे सकजे, पाकिस्तान सिंध तास माहिदे के तहफ़ लाइ घुर्बल कदम खणण लाइ तयार आहे। पाकिस्तान पंहिंजे पाणीअ जे हिसे ते को बि ठाह न कंदो, सिंध तास माहिदो पाकिस्तानियुनि जी बका जो मसइलो आहे। सूबन वारी गालियन ते ध्यान न ॾियण घुर्जे, नई परेशान थियण घुर्जे, मोहसिन नकवी जी सदर आसिफ अली सरदारी सां का मुलाकात नाहे थी, मुलाकात वारियूं ॻाल्हियूं मफ़रूज़ आहिनि, ग़लति ख़बर सबब बदनामी थिए थी, ग़लति ख़बरनि खे कीअं रोकजे, साफ़ी मशवरा ॾियनि। कराची प्रेस क्लब में साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे शजील नामेमण चयो त नवनि सूबनि बाबति पीपल्स पार्टी जी पॉलिसी वाज़े आहे, सिंध असेंबली बि फ़ैसिलो अॻु ॾेई चुकी हुई, हाणे गोड़ थियो त वरी बि फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। पाकिस्तान दहशतगर्द जो शिकार रहियो आहे, लॉन्ग मार्च कंहिं मक़सद लाइ कया वेंदा आहिनि पर पीटीआई जो मुतालबो रुगो सदन बानी खे आज़ादु करणु आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो खैबर पख्तूनख्वा ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन, चार दहशतगर्द मारिजी विया हथियार हथ। केपी जे इलाइक़े मीरअली में फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारिजी विया, टांक में पटवार खानी खे टारगेट करण जी बि कोशिश नाकाम, पंहिंजो ई बम फाटण सबबि हिकु दहशतगर्द जनम भीड़ो थी वियो। बलोचिस्तान जे सोराब ज़िले में पी फोर्सिस जी हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाबु कार्रवाई, हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। गरु वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां केपी ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाबु कार्रवाइयुनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश, मोहसिन नक़वी चयो त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा।
2: भाई का सही काशी उम्र सेकेंड अफसर थे, उनको कल का जाकू ने मार दिया और उनकी लाश भी यहाँ मददगार वहाँ पे पड़ी हुई है। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे भाई को हम तक पहुँचा दे ताकि हम उनके आखिरी मुकाम तक पहुँचा दे।
3: वजीर हुकूमत से हाथ जोड़ के पुकार भी आए कि किसी तरह से हमारे बेटे को

0: जिंदा तो ला नहीं सकी जो हमें रखना था, बल्कि हमको उसे दफनाना पड़ेगा ताकि वो लाश तो हमारे हवाले करे ताकि हम आखिरी दफा देख सके।
1: सोमालिया में समुंडी धड़लन के कब्जे हेठ पहरी जहाज के छदान लाय सोमाली फौज जो ऑपरेशन। जहाज से मौजूद पाकिस्तानी अमले में कुछ के मारजन जा इतला। जहाज से मौजूद पाकिस्तानी अमले के वारिसन मूजिब सोमाली फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 जना मारजी विया हैं, जिन में 3 पाकिस्तानी हैं। सदन लाश खराब थी रहा है, मदद कई वे। कंबट भरसा आरीजा बिरादरी की बिनधुरियन में पैसों की देती लेती तां छेड़ो, एक जनों कतल, ब जख्मी। बहारो शहर में धुरियन में पैसों की देती लेती तां छेड़े दौरान फायरिंग, गोली लगन सबब अजीब आरे जो भारजी वो, ब जना जख्मी थे। लाश ए जख्मियों के अस्पताल मुंतकिल कर। सिंध में निजी क्लिनिक हलाइंदड़ डॉक्टर्स जो एफ पी आर पारा पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम लागू करण खिलाफ़ सूबे में क्लिनिक्स बंद करे एहतजाज। कराची, हैदराबाद, कैतपुर ए बेन शहर में डॉक्टर्स एहतजाजन क्लिनिक्स बंद रखियूं। डॉक्टर ने मेडिकल सेंटर ए क्लिनिक्स बंद करे बाहन से कारियों पट्टू बधी एहतजाज कर। डॉक्टर्स मूजिब तिबी खिदमत से एफ पी आर जो पॉइंट ऑफ सेल वो निज़ाम कें भी सूरत में कबूल ना है, फैसलो वापस वरतो वे। मलीर में पोर्ट कासिम वेझो हथियार बंदर की खानगी कंपनी में पुर। हथियार बंद निजी कंपनी के गार्डन ए पुलिस एहलकार के रसन से बधी पुर करण बाद फरार थे। जरियन मूजिब 15 का 20 हथियार बंद कंपनी की भित टप्पी ड्यूटी से मौजूद बिन पुलिस एहलकार गार्डन के अहमाल बनाए रसन से बधो। पोरुन सरकारी ए जाती हथियार मैगजीन गोलियों ए मोबाइल फोन पुर किया। एक गार्ड पैंजा हथ ओलन बाद बेन साथियों के आजाद कियो। वाकये जो केस दाखिल। हैदराबाद के लतीफाबाद वाले इलाके में 14 वरियन की नींगर चोरी इल्जाम हेठ वेछाणो तशद्दुद। शहरियन चोरी के इल्जाम हेठ नींगर के थंबे से बधी तशद्दुद जो निशानो बनायो। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। पुलिस जो चवण है तो मुतासिर नींगर के हथ कयो वियो है। तशद्दुद कंदड़ जवाबदारन के कानून के कटड़े में आंदो वेंदो। दुबई का तलबीब भेंदड़ मुसाफिर जहाज की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। समूरा मुसाफिर ए अमलो महफूज रहा। इसराइली मीडिया मूजिब जहाज के एक पायलट जहाज के क्रैश करण की कोशिश कई, जैके बे पायलट नाकाम बनाया। पायलट साथी पायलट के रोकण से चाकू हणी जख्मी भी कयो। सऊदी अरब में इम्कानी तौर जहाज के तबाह करण की कोशिश कदड़ पायलट के हिरासत में वरतो वो। मुसाफिर जहाज दुबई का तलबीब वही रो हो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
3: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
4: मेरे पापा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ कर देना।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तो आवाज भी सिंधी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: करके हमको उसे दफनाना पड़ेगा ताकि वो लाश तो हमारे हवाले करें ताकि हम आखिरी दफा देख सकें।
1: सोमालिया में सामुंडी धाड़ेलन के कब्जे हेठ आयल बहरी जहाज के छदण लाए ऑपरेशन में अचल जो शिकार थियल पाकिस्तानी शहरियों जहा वारिस प्यार लाशन लाए परेशान हुकूमत का लाश जल्द डे आने लाए कदम करण जो मुतालबो वारिसन मूजिब सोमाली फोर्सिस के ऑपरेशन में पंज जणा मारजी विया आहिनि जिन मां टे पाकिस्तानी आहिनि। गंबट भरसा आरिजा बिरादरी की बिंदुरियन में पैसन की डेती लेती तां जेड़ो एक जणो कतल ब जख्मी बहारो शहर में धुरियन में पैसन की डेती लेती तां जेड़े दौरान फायरिंग गोली लगन सबब अजीब आरे जो मारजी वो ब जणा जख्मी थे लाश ए जख्मियों के अस्पताल मुंतकिल कर सिंध में निजी क्लिनिक्स हलाइंदड़ डॉक्टर्स जो एफबीआर पारा पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम लागू करण खिलाफ सूबे में क्लिनिक्स बंद करे एहतजाज कराची हैदराबाद खैरपुर ए बेन शहरन में डॉक्टर्स एहतजाजन क्लिनिक्स बंद रखियूं डॉक्टरन मेडिकल सेंटर ए क्लिनिक्स बंद करे बाहन ते कारियूं पट्टियूं बधी एहतजाज कयो डॉक्टर्स मूजिब तिबी खिदमतन ते एफबीआर जो पॉइंट ऑफ सेल वारो निज़ाम कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। हैदराबाद में व्यापारी नरेश कुमार के कत्ल केस में गिरफ्तार बजवाबदार तीन डीन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कत्ल में इस्तेमाल थियल पिस्टल भी हथ टंडो यूसुफ पुलिस मूजिब जवाबदार मोहम्मद वकास मुगल असद अली दमाज वाक्य बाद हथियार कब्रिस्तान की भित भरसा लिकाया हुआ। हैदराबाद के लतीफाबाद वे इलाके में 14 वर्ष के नीगर चोरी इल्जाम हेठ वेशो तशद शहरियन चोरी के इल्जाम हेठ नीगर के थंबे से वी तशद जो निशानो बनाया वाक्य की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल पुलिस जो चवण है तो मुतासिर नीगर के हथ कर वो है तशद कदड़ जवाबदार के कानून के कटहरे में आंदो वो दुबई का तलबीब वेंदड़ मुसाफिर जहाज मुबैना तौर पायलट्स में झेड़े बाद सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग जख्मी पायलट तबुक के अस्पताल मुंतकिल इसराइली वाक्य के दहशतगर्दी करार दई छो जहाज के तबाह करण की कोशिश थे दावा रिपोर्ट में एक पायलट जहाज के तबाह करण की कोशिश कई रोकण से साथी पायलट के हमलो कर जख्मी कर जहाज में सवार बिन पायलट्स जहाज की कामयाब लैंडिंग कराए मुसाफिर जहाज दुबई का तलबीब बनी रो हो।

0: 2003 में इराक ते चढ़ाई कंदड़ अमरीका इराक मिशन खत्म करण जो ऐलान करे छो। आखिरी फौजी अड्डो भी बंद कंदे समूरो फौजी ए जंगी सामान वापस खड़ी वो। 2003 में सदाम हुसैन ते संगीन इल्ज़ाम लगाए इराक ते हमलो कंदड़ अमरीका तकरीबन 23 साल इराक में रहो। पेंटागोन बाज़ाब्ता तौर अज इराक मिशन खत्म करण जो ऐलान कंदे चयो आहे त अमरीका इराकी हुकूमत जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मदद वारो सिलसिलो जारी रखंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सी होगी ना वो गवर्नर रूल। यही रूट है और क्या रूट है, अनलेस के कल को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबादी के लिए तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब का सपोर्ट उसको हासिल है, पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है, खान का मैंडेट चलता है, खान की डायरेक्शन चलते हैं, किसी और की कहने से कुछ नहीं।
1: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई आहे सुहेल अफरीदी के बानी ए पार्टी की हिमायत हासिल है, केपीए में न इमरजेंसी लगंदी ए नई वरी गवर्नर राज लगंदो। इस्लामाबाद एंदे पीटीआई गोहर चयो त डायरेक्शन रुगो बानी जी हलंदी आहे, लॉन्ग मार्च जो रूट त इस्लाम आहे।
2: बल्कि और सूबाई हुकूमत की उसे कंट्रोल करने में अदम दिलचस्पी और नाकामी वो वजह है जिसकी वजह से आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी के लिफाज की बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें जुटी में ताउन करेगी।
3: मुझे लगता है कि ये अब सियासी तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं, जिस तरीके से वो अली मीर गंडापुर के पास गए जिसको वो आलाकार कहते थे, मुख्तलिफ अलकाबाद से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पे सुल्तान अफरीदी के पास ये सकत है कि वो ये नॉर्मल कर सके। आई थिंक पॉलिटिकली वो बहुत वीक है।
1: पीटीआई वारा सियासी तौर से घणो कमजोर थी वया आहिन, लॉन्ग मार्च करे न सकंदा। सुदसमा वफाकी वजीर अता ताड़ चयो आहे त सुहेल अफरीदी जैं तरीके से अली अमीन गंडापुर वट वयो सभिनी जे सामू आए। पीपल्स पार्टी जे नैर बुखारी चयो त सूबाई हुकूमत जी नाकामी ते गवर्नर राज लगी सके तो। वफाक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज बाबत मुशावरत कई त आइन मूजिब मशवरो डिनो वेंदो, केपीए में गवर्नर राज आइन खां मथां न हूंदो। हथियार फिटा कंदा या न खबर ना है, जेस ताईं मां आया उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग उन ठीक रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया से गालांदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो तो समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आया जेको किम जोंग उन के पसंद कंदो आया ऐं हू मुझो बेहतरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका जी बरतरी बरकरार आहे, जेका बरकरारी रहंदी निगरानी लाइ कमेटी भी जोड़े रहा आहियूं। वजीर सालिस मुल्क मुलाकात कतरी सालिस ईरानी तजवीजन ते अमरीकी जवाब अब्बास अराकची हवाले कयो। अब्बास अराकची अमरीकी जवाब ते ईरानी क्यादत से मुशावरत कंदो। ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सरबराह मोहसन रजाई चयो आहे त ट्रंप दलदल में फांसी पयो आहे। ईरानी तजवीजू अमरीका वट पहुंची वयू आहिन, फैसलो ट्रंप के करणो आहे। ईरान कहीं भी सूरत में हथियार फिटा न कंदो। मुआदन के एक तरफो खत्म या मुअतल नथो करे सकजे, तय थियल मुआदन ते अमल करण बे लाजिम हुंदो आहे। सिंतास मुआदे बाबत आलमी सालसी अदालत बे पाकिस्तान जे हक में फैसलो दे चुकी। सुद समा वारे फाकी वजीर अता ताड़ चयो आहे त सिंतास मुआदे के खत्म तोड़े मुअतल नथो करे सकजे। पाकिस्तान सिंतास मुआदे जी तहफ़ुज़ लाइ घुर्बल कदम खणण लाइ तैयार आहे। पाकिस्तान पंहिंजे पाणीअ जे हिसे ते को बि ठाह न कंदो। सिंतास मुआदो पाकिस्ताननि जी बका जो मसलो आहे। सूबन वारन गालन ते ध्यान न देन घुर्जे, नई परेशान थन घुर्जे। मोहसन नकवी जी सदर आसिफ जरदारी सा का मुलाकात नाहे थी, मालूम मफरूजा आहन। गलत खबर सब बदनामी थिए थी, गलत खबरन के किन रोकजे, सहाफी मशवरा देन। कराची प्रेस क्लब में सहाफन सा गालंदे शर्जील मेमन चयो त नवन सूबन बाबत पीपल्स पार्टी जी पॉलिसी वाज़े आहे। सिंध असेंबली बे फैसलो अग डेई चुकी हुई, हाने गोड़ थियो त वरी बे फैसलो बुधाए छडियो आहे। पाकिस्तान दहशतगर्दी जो शिकार

0: कर रहा है। लॉन्ग मार्च कें मकसद ला क्या वा पर पीटीआई जो मुतालबो रुगो संदन बानी के आजाद कराण है। सिक्योरिटी फोर्सिस जो खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन, चार दहशतगर्द मारजी वया हथियार हथ। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मीर अली में फोर्सिस के ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारा वया। टांक में पटवार खाने के टारगेट करने की भी कोशिश नाकाम, पहंजो ही बम फाटन सबब एक दहशतगर्द मारजी वयो। बलोचिस्तान के सोराब जिले में भी फोर्सिस की हिंदुस्तानी फितने खिलाफ कामयाब कार्रवाई, एक दहशतगर्द मारजी वयो। घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस के भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो तो दहशतगर्दन की खात्मे ताई ऑपरेशन जारी रहंदा।
1: भाई सैयद काशी उमर सैकिन अफसर थे, उनको कल का जाकू ने मार दिया। उनकी लाश भी यार मददगार वार्डशिप पे पड़ी हुई है। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे भाई को हम तक पहुँचा दे ताकि हम उनको उनके आखिरी मुकाम तक पहुँचा दे।
2: बस ये हुकूमत से हाथ जोड़ के पुकार है कि किसी तरह से हमारे बेटे को आप वापिस लाकर वो वापिस
3: हमारे बेटे को जिंदा तो ला नहीं सके जो हमें रखना था, बल्कि हम तो उसे रखना पड़ेगा ताकि वो नाश तो सफर दे।
0: सोमालिया में सामुंडी धाड़ेलन जी कब्जे हेट बहरी जहाज के छड़ण लाए सोमाली फौज जो ऑपरेशन। जहाज से मौजूद पाकिस्तानी अमले मां कुछ जी मारजण जा इतला। जहाज से मौजूद पाकिस्तानी अमले के वारसन मूजिब सोमाली फोर्सिस के ऑपरेशन में पंज जणा मारजी वया हन, जिन मां टे पाकिस्तानी हन। सनन लाश खराब थी रहा हन, मदद कई वने।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध असेंबलीअ जी घरू मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटी कचे में सिहत तालीम ऐं समाजी तरक़ीअ लाइ कम करण जी हिदायत करे छॾी। चेयरपर्सन फरियाल टालपुर जी सदारत हेठि इजलास दौरान सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार पारां कचे जी सूरत हाल ते ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो त कचे में केतिरनि ई ॾोहारनि सिलेंडर कयो आहे ऐं हथियार पिण हथ कया विया आहिनि। एम डी केट इम्तिहान में थर जो को ॿार पहिरीं पोज़ीशन माणे थो त एतराज़ न थियणु घुर्जे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पहेंजो शहर पहेंजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: जीए एफएम 90.8।

लाज़मी बणिजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूदु आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 to 5 PM ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण लाइ पहिरियों क़दम वधायो

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत आए सचाई, लबन ते मुर्का विखरिल दिल में आ बे आई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ। कराची का कश्मीर केंझर का कारूंझर ताई सुहणी सिंधवासिन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे। प्रोग्राम दिल जी गाल सा गड आऊं आया आबिद चौहान आए आवा बुधी रहया हो GAFM नेटवर्क। GAFM नेटवर्क आई प्रोग्राम दिल जी गाल जे बुधंदड़न सबनी मानायतन महबूबन दिलरुबा दोस्तन प्री प्यारन के वेलकम भलीकार खुश आमदीद।

ऐं प्रोग्राम में शामिल कंदासीं ख़ूबसूरत गीत जी एफ एम नेटवर्क ऐं प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी प्रिय प्यारनि दिलरुबा दिलबर दोस्तनि जे नाम तुफ़ैल संजराणी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में प्यारो गीत हिकिड़ो तुंहिंजो ई सिरा जेको पंधु थो पियो कराए अचो त गॾिजी हीउ गीत एंजॉय कयूं।

को खामोशन में साह विझो, को खामोशन में साह विझो जी रूपा माड़ी लोक तके, को खामोशन में साह विझो जी रूपा माड़ी लोक तके, को दोदो भड़की दाह करे हन रणपट के का जाग अचे, को खामोशन में साह विझो सोचन के अड़ायो मक्तल सा शोलन के समायो बोलिए में, तारीख दरन ते बीठी आ के फूल विझो उन झोलिए में।

कुछ खामोशन में साह विझो बदबخت उघाड़न रातन में जंजीर टुटण जी गाल हले के दीवार उन में डार पवन महकार उठण जी गाल हले को खामोशन में साह विझो को खामोशन में साह विझो मेहंदी के हणी का पेरन ते साहिल जी हवा में प्यार करे घाघर के खिली का चेल चुमे घाघर के खिली का चेल चुमे हर पार प्रिय जो ख्याल बरे को खामोशन में साह विझो को खामोशन में साह विझो के ओढ़ी रेटी अजरक के आए ओजा गंजा गोठ घुमन के ओढ़े रेटे अजरक के ओजा गंजा गोठ घुमन कुछ तारन में तकरार थन महबूब रिलन ते जुल्फ कुडन को खामोशन में साह विझो को खामोशन में साह विझो कावाहमदी में छेर वजे बेताब उठी को तमर चवे निसहान भिटाई सिंधड़ी ते पियो गाढ़ो सूरज गाठ खणे को खामोशन में साह विझो को खामोशन में साह विझो का वाह वंदी में छेर वजे बेताब उठी को तमर चवे निसहान भिटाई सिंधड़ी ते पियो गाढ़ो सूरज गाठ खणे को खामोशन में साह विझो जी रूपा माड़ी लोक तके

प्रोग्राम दिल जी गाल सां गद आऊं आया आबिद चौहान आए अवां बुधी रहया हो GAFM नेटवर्क उम्मीद त सभी महबूब अल्लाह जी अमान में पंहिंजे बचड़न सां शादाबाद खुश हूंदो

पंहिंजनि सां प्यार वंडींदा हूंदो ऐं असांखे बि यादि कंदा हूंदो। कल हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक खां पोइ हाज़िर थिया आहियूं अव्हां जी ख़िदमत में। काल जे न अचण जो सबबु यकीन अव्हां फ़ोन कॉल्स वसीले मूंखां ॼाणण जी लाज़मी कोशिशि कंदो, त पोइ अव्हांखे हिकु भेरो जिन दोस्तनि अॼु असांखे न्यूली ट्यून कयो आहे उन्हनि खे पंहिंजो लाइव कॉलिंग नंबर ॿुधाईंदो हलां। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000111348।

0: दोस्तन के वंस अगेन वरी भी मां प्रोग्राम जो पैटर्न बुधाई दो हला प्रोग्राम दिल जी गाल अवासा दिल जी गानी थी दियुन आए शायरी वसीले डेफिनेटली शायरी वह जुबान है जेका यानी कि पूरी अवा जी सजी तकरीर जो मकसद महवर जेको आ बिन सिटन में भी जेका त वह बयान करे छदींदी है सो शायरी वसीले प्यार भी हों है मोहब्बत भी होंगी है शायरी वसीले पैं दिल की गाल आसानी से महबूब ती पहुँचा सकते अवज महबूबन जो गाल जुबानी दोस्तन की शायरी शामिल कर उन वसीले भी पुजाइंदाऊँ जो अवज की शायरी बुधी अव दिल की गाल पूरी मुनी सिंध ती पहुँचाइंदाऊँ हिंसर वक्त थोड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ब्रेक का लाइव कॉलिंग अस शामिल कंदे प्रोग्राम में तो बुधा रहो GFM नेटवर्क वापस वरी वरदे इन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का
1: राज दुलारा शहर
2: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर
1: सक्खर के हर अंदाज से बसी आवाज जीए सक्खर FM 88 सक्खर की आवाज
2: जीए FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
4: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
5: छा तव्हां जो ख्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD 5 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA ख़ासि सहूलियतूं स्कॉलरशिप्स मौजूद 5 सालनि जे कोर्सिस में एडमिशन बिल्कुल फ्री जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकमल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे याद रखो सीट्स महदूद आहिनि तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस OT हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स Sector 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबितो 07115635642 ऐं 03108166111
6: यार मां छा कयां किथे वञा घर में वेठो आहियां पर ठीक ही न आहियां शायद मुझे जिंदगी लाइ का दवाई नाहीं ठही
7: छो भला छा थियो आहे तोखे साफ साफ ॿुधा मसलो छा आहे
6: यार हिकु मसलो हुजे त ॿुधायां मुंहिंजी त मसलनि जी कतार लॻल आहे न बुख सही लॻे थी ऐं जे कुझु बि खावां थो त हज़म ई नथो थिए पेट फूकजी वञे थो हथ पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां
7: यार तुंहिंजा घणा न बस हिकु ई मसलो आहे
6: हिकु इहो कीअं
7: हा तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे छा तो न ॿुधो आहे मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी
6: त पोइ मां छा कयां
7: सोलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स हे कुदरती जुज़नि मां तयारु कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुलु ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो बुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई पेट फूकजण ख़तम सुस्ती ख़तम जिस्म में ताक़त ईंदई
6: वाह यार वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
7: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस के सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आई राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त
8: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक. स्वांग देवन ने कहा कि मैं असा जो है बैक टू बैक अस प्रोग्राम में कॉल शामिल कहकर ये प्रोग्राम जो है अवं जे ये करे आए अवं जो गाल शामिल कहे प्रोग्राम में तो असो कॉलर लाइन से मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम खैर साईं किथां खां.
1: वालेकुम सलाम आप दोस्त साईं खुश आयो
0: सर. दुआओं दुआओं अल्लाह ऐसा अली वाहन का हादी बख्श.
1: हां साईं
0: अखिन ते साईं वेलकम भलीकार खुशामदीद.
1: ये ना वन वो मुचा मिठा
0: हां
1: आज दर्पण हुआ तो अंतिम दिन का दिन. हां
0: हां हां हां क्या बात है.
1: साईं
0: पूरो बिल्कुल जी दोस्तों. गीत की फरमाइश ये भी थी पर अस मौके महल के वक्त की नज़ाकत के ऐसे अस भी करो पव है तो कॉलर शामिल कहे प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां. मंगी साहब वेलकम भलीकार खुशामदीद. वजाहत
1: लगे आते ही लत रख लई.

0: ইবাদে দিলদারো বুলালে
1: सर सर ही क्लिपिंग बुधो वाह सर वाह लाजवाब
2: असा रफी साहब जो बावल नगर वारो
1: मां
2: मां याद में ही हमने सुनाया
1: बस मां भी उर्दू में कहने बचाए हैं बिल्कुल
2: तो हमने सिंध से के लिए नजर किया रफी भाई
1: बिल्कुल
2: बावल नगर वाले के लिए
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: यकीन से पसंद आया हुआ होगा
1: यकीनन यकीनन सर बड़ी मेहरबानी नवाजिश है शुक्रिया
2: और दोस्तों को याद करना
1: याद कर ले सर याद कर ले दोस्तों
2: नागर हुसैन जा बोटा रोड से शक्कर आजर बीती जे बरकत अली बद
1: जी
2: मुनवर अली मोहम्मद अली अहमद अली
1: वाह वाह
2: और सर सारे दोस्तों की फरमाइश है आप गाना सुनाए आपदा पर इनका लड्डी वाले
1: इस वक्त जो है
2: मेहरबानी सर
1: लव यू सर थैंक यू शुक्रिया क्या कहने मंगी साहब बहुत लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन रशीद साहब अगर सुन रहे हैं हमें आज जो है कि बहावल नगर से तो उन्होंने सिंध वालों का प्यार मोहब्बत देख लिया कि अगर आपको जो है कि सिंध वालों की मोहब्बत खींच लाती है हमारे प्रोग्राम में शामिल करती है तो सिंध वाले आपको याद रखते हैं और बिल्कुल आप ऑलवेज जो है कि हमारे दिलों में हैं और सभी तमाम लिसनर्स जो भी हैं हमारे सिंधी उर्दू पंजाबी सिंधी सराकी जो भी हैं सुनने वाले बलोच पठान वो सभी हमारी सर आँखों पर तो बिना किसी ताखीर के बिना कहें देर जे असा जो न्यूज़ ब्रेक ते वन का अग में जलाल चांडियो जी खूबसूरत आवाज़ में ही गीत गजी इंजॉय कंदासे मुझा मिठा इंदे कदें मुखा पुछण जे वास्ते अचो तो गजी गीत इंजॉय क्यों

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर न हुंदी तो यो कीअं छो ऐं छो सडियो त आशिक वेचारो दरवाजे खां अॻिते वञी उहो मोह लूथी खत ते वेही रहियो जीअं हिते नंबर अथसि मूंखे पंहिंजे मुल्क वठी हलो मूंखां उहो बि कोन पुछणो सॼो ॾींहुं इस्पताल

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठ अहम इजलास घरू वज़ीर मोहसिन नकवी अता तारड़ तलाल चौधरी ए बियन जी शिरकत मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म के अमन अमान जी सूरत हाल ते ब्रीफिंग डिनी ज़रियन मूजिब खैबर पख्तूनख्वा जी सूरत हाल ए गवर्नर राज समेत इमरजेंसी वारे मामले ते भी ख्यालन जी डे वठ कई वई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत ज़रदारी सां भी मुलाकात करण जो इम्कान मुल्की सियासी सूरत हाल खास तौर ते खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान वारी सूरत हाल ते गौर वीचार कयो वेंदो।
1: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज या इमरजेंसी वफाकी हुकूमत की मशावरत आखिरी मरहले में दाखिल वफाकी वजीर तारिक बदर चौधरी के पी में इमरजेंसी लगाने संजीदा गौर थियण की तस्दीक कर छी। तारिक बदर चौधरी के पी में वधंदड़ दहशतगर्दी ए सूबाई हुकूमत के कम न कर सबब आइन के आर्टिकल 232 से गौर कर रही है। पीपल्स पार्टी भी जरूर साथ दी। वफाकी वजीर सेनेटर आज़म नज़ीर तरड़ चयो आहे त के पी में गवर्नर राज जो फैसलो सदर ऐं वज़ीर आज़म खे करणो आहे।
2: होगी ना वो गवर्नर रूल यही रूट है और क्या रूट है अनलेस कि कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबादी के लिए तो मार्च सोहेल अफरीदी साहब को खान साहब का सपोर्ट उसका हासिल है, पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है। खान का मैंडेट चलता है, खान के डायरेक्शन चलते हैं, किसी और के कहने से कुछ नहीं।
0: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई है सोहेल अफरीदी के बानी ए पार्टी की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में न इमरजेंसी लगंदी ए नई गवर्नर राज लगंदो। इस्लामाबाद में मीडिया से गालंदे पीटीआई चेयरमैन जो चवण हो तो डायरेक्शन रुगो बानी की हलंदी। लॉन्ग मार्च जो रूट तो इस्लामाबाद जो ही है।

ईरान जी सूरतहाल घणी खराब आहे, हथियार पटा कंदा या न ख़बर न आहे। जेसिताईं मां आहियां, उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग उन ठीकु रहंदो। वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख़्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंदि कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका जी बरतरी बरक़रार आहे, जेका बरक़रार रही रहंदी। निगरानी लाइ कमेटी